0: This is Like a Gold.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: 0208574 8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
5: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
4: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
5: And you didn't pay those massive roaming charges?
4: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
6: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
7: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: Voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
2: Atif Aslam live in the UK.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS.
1: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Backed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
6: T's and C's apply.
7: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
8: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक न घूमे, आपके अपने लाइका गोल्ड पर

0: Bring your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
1: T's and C's apply.
2: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर

में उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई हैं, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई हैं। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई, नान हुक्मे जे बुझे ताहों मैं कहे न कोई। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी ले फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवा। साचा साहेब साच ना।

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सन।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहावे।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

है साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख है सिर्फ।

गावन पंडत पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले गावन रतनु पाए तेरे 68 तीरथ नाले।

0: लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड।

0: find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays humse sasta kahin nahi mil sakta. Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
1: Travel Hub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit travelhubworld.com.
2: Location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
7: अरे चंचल कुमारी, साइको ऑनर शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तू?
8: खातून कौन थी?
7: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस।
8: तो पुलिस में जाती, वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल।
9: एक पति दो दो कंफ्यूजन और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट। 15th मई से प्रजापति पांडे मचाएंगे ऐसा बवाल कि आप भी पूछेंगे कौन पत्नी कौन वो, पति पत्नी और वो दो, इन सिनेमाज नेशनवाइड फ्रॉम द 15th ऑफ मई।
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
13: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All at all protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
14: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
14: लाइका रेडियो, फाइनलिस्ट एट द रेडियो एकेडमी आरियाज 2026.

0: लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
1: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मास में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्रीमद् भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के 1000 नामों के साथ साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदर कांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक स्थान 22 मामस्टल रोड एरो HA37RR ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट
0: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक रेडियो
3: चलो जाइए एक नवा सफर पर
4: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रिकाना स्थलों ने मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नाइरोबी मुंबासा जांजिबार अने दारिसलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स
5: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
4: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
5: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
4: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर
6: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न एवरी ट्रांसफर इनटू अ चांस टू विन व्हाइल मेकिंग योर मनी गो इवन फर्दर विद SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप
9: टेबल पे सिर्फ एक हीरो जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स
8: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स
9: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स देसी स्वैग इन एवरी बैग
10: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists.
11: Bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
10: Call today on 01923 883 100.
11: Or go to skylordcruiseandholidays.com.
10: Book with confidence.
11: We're Atoll protected.
12: પ્રેમ પાસ્ટ અને ફ્યુચર વચ્ચે અટકાયેલું એક દિલ
13: તમને શું લાગે છે હું અહીંયા સાચે વેડિંગ પ્લાન કરવાવી છું
12: વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરી સ્ટારિંગ પૂજા જોશી પરીક્ષિત તામલિયા ભાવિન ભાનુશાલી મિલોની જોન્સા અ ફિલ્મ બાય ધ્વની ગૌતમ રિલીઝિંગ ઓન 15th મે
14: આ ફેમિલી વાળી ફિલિંગ ને મેં ત્યાં બહુ મિસ કરી છે
0: લાઈક અ રેડિયો નેટવર્ક પ્રાઉડ હોસ્પિટાલિટી પાર્ટનર રાગસાન Gold Breakfast with Kajol.
15: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS's Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

You know, I was just listening to the music and I forgot that I had to speak. That's the essence of morning mantra. कभी कभी ना मैं जस्ट म्यूजिक सुनती हूँ, आई लव दिस म्यूजिक सो मच, मैं एक धुन में चली जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि यार मुझे कुछ बोलना भी है. क्या बोलना है? आज हम दोस्ती के बारे में बात करेंगे. आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि ये वीक मंडे से आज तक हम लेके आ रहे काफ़ी कुछ चीज़ें

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई।
3: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
4: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
3: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
5: विल नहीं है ये रिज आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444।
6: Looking for your next cruise getaway?
7: Explore the Mediterranean, Northern Europe, the Caribbean, or even around the world. With Travelling Style, every trip is tailored to you.
6: From relaxation to adventure. Call 0208-954-0077
7: or email info@travellingstyle.co.uk.
6: 24/7.
7: Travelling Style.
6: Where your dream holiday begins.
8: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
9: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Laika Gold TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
3: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203-773-633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. What's your travel mantra?
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: International Siddhashram Shakti Center की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मास में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए. 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्री मद भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के हजार नामों के साथ. साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक. स्थान 22 मामास्टर रोड हैरो HA37RR. ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208426-0678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
8: Mom always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
9: Eviction, tenant dispute, property ka masla. Kenton Solicitors London landlords aur tenants ke liye fast action lete hain aur residential aur commercial conveyancing plus commercial leases handle karte hain. Abhi call kare 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
10: ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है, कहीं भी घूम कर आइए. फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए. अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 0208-954-0077. दैट्स 0208-954-0077. आपके मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है.
11: ट्रेवल इन स्टाइल, ट्रेवल इन स्टाइल, ट्रेवल इन स्टाइल.
12: एक मसालेदार चाय के बारे में सोचते ही बस एक ही नाम याद आए, यूनिक मसाला चाय. इस सर्दी मजा लीजिए यूनिक चाय के अलग अलग मसाले फ्लेवर्स का. सिर्फ गर्म पानी लो और यूनिक चाय के साथ घोल लो. सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सबकी फेवरेट यूनिक मसाला चाय तैयार.
13: This May, Spring Madness is live at iTech Wholesale. From 11th to 17th May, massive deals, unbeatable discounts and top brands like Taj, Trophy Rice, Tilda, VT, Kohinoor, Ashirwad and Ahmed Tea. Plus, Amira Frozen, Royal Forest, quality ice cream and fresh fruit and veg at crazy prices. Free food tasting on 13th and 14th. Free membership, free parking. Open 24/7.
14: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Gold Breakfast with Kajal. Like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: शुक्रवार वर्ष 2026 के मई महीने की 15 तारीख और भाई वक्त हो चला है 10:05 ब्रिटिश घड़ियों में। कितना इंतजार करवाता है ये फ्राइडे, कितनी देर बाद आता है ये फ्राइडे और कितनी जल्दी छुमंतर हो जाता है फ्राइडे सैटरडे संडे, जल्दी आता है मंडे। ऐसा लगता है सब वक्त अपनी रफ्तार से चलता है। इससे कितना अच्छा हो कि सप्ताह में 3-4 सैटरडे संडे आए ऐसा हो नहीं सकता। लीजिए साहब डायरी खोलें और शायरी से करें शुरुआत आज की मनोरंजन कार्यक्रम की। याद दिलाते हुए माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। गीत संगीत सूचनाएं समाचार चिंतन विचार और भाई काव्य कला की ये छोटी छोटी क्या कहें फूल पत्तियां। लोग कहते हैं जमाना बदल रहा है, वक्त कैसा आ रहा है। मुझसे किसी ने पूछा आपके शहर का नाम क्या है। आप जानते हैं भाई जहां मेरा जन्म हुआ जहां से मैं आता हूं अपने शहर का नाम क्या बताता हूं, रोहतक। भाई है तो रोहतक लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, हम जिस्म के रास्ते से रूह तक पहुंचने का प्रयास करते हैं इसलिए अपने शहर को हम रोहतक कहते हैं।
1: Return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Reminisce those classics on Leica Gold.
0: रूह तक रास्ता बनाया जा रहा है. रूह तक रास्ता बनाया जा रहा है. जिस्म को जरिया बनाया जा रहा है. जख्म पर नहीं आंख पर बांधी है पट्टी, चोट को अंधा बनाया जा रहा है। नस्ल को एक भीड़ का हिस्सा बनाकर असल में तन्हा बनाया जा रहा है। और पाप की करते कमाई, पाप कर की करते कमाई उसका नाम लेकर प्रभु का नाम लेकर धर्म को धंधा बनाया जा रहा है। शायरी जिंदगी का मैल है बस, और मैल से पैसा बनाया जा रहा है, धर्म को धंधा बनाया।

0: पीछे पड़ गया इनकम टैक्स हम। अरे बम बम नाचे किशोर कुमार बम बम मको बम बम मको बम बम मको बम बम मको बम बम बम बम
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: क्या खा के आए हैं आज? आप आते ही कोसने लगे हैं, हैं? भाई ये क्या मतलब दुनिया खराब है? अरे साहब ये तो कहानी आपकी अपनी है, क्योंकि दुनिया आपसे ही बनी है शर्मा जी। अगर आप खराब हैं तो दुनिया खराब है, आप अच्छे हो जाइए तो दुनिया अच्छी हो जाएगी। हाँ पर वार्निंग अच्छी है, संभल के रहना जी। हाँ भाई सोच समझ के पाँव बढ़ाना, दुनिया बड़ी खराब है, आगे बढ़ना। राइट शुरुआत हो गई भाई, दो गीत हमने प्रोग्राम में बैक टू बैक आपको सुनवा दिए। पहला गीत था वो किशोर कुमार की आवाज़ में, आंसू और मुस्कान फिल्म से लिया था, जय गोविंदम जय गोपालम कॉमेडी। और भाई दूसरा गीत ये भी कुछ कुछ कॉमेडी था, एंड दैट वाज दो फ्रॉम दो जासूस फिल्म। भाई दो जासूसों की बात आपने सुनी, और तीसरा जासूस कहता है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। हाँ पता नहीं भाई, हमें तो बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, हाँ थोड़े बहुत रुकावटें आई। वो क्या होता है कि जब आपको दुनिया बहुत अच्छी लगने लगती है तो शायद कहीं आप भी अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और इसमें कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है कि ये अच्छा क्यों बन रहा है, इतना अच्छा क्यों। मुझे भी कभी कभी लगता है ये मैडम इतनी अच्छी क्यों है, रोज़ सुबह सुबह चाय दी जाती हैं। एक ज़माना था भाई, हम जब मैं बीबीसी में काम करता था तो वहाँ पर चाय का कप सब्सिडाइज थी, चाय वहाँ बुश हाउस में 6 पेंस की चाय मिलती थी, 6 पेंस की। हाँ और भाई एक कप चाय, और उस पर हम झगड़ा किया करते थे, आज मैं पिलाऊंगा। चाय अच्छी थी ऐसी बात नहीं है, लेकिन 6 पेंस की सब्सिडाइज। कहीं कहीं जो है खाना पीना इतना बढ़िया और इतना सस्ता होता है कि जी चाहता है भाई दावत करते ही रहे। लेकिन यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ जो कैंटीन थी उसमें थोड़ा सा महंगा था, कैफ़े था, और वहाँ पे दिल नहीं करता था, मैं बचता था ग्रुप में बैठने से, क्योंकि कभी ना कभी वो आके लड़कियाँ चेप जाती थी, आज रवि पिलाएगा कॉफ़ी। एक बार तो ज़बरदस्ती हो गई अपने साथ भाई, और हमने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी सबके लिए, और साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह भी, और साहब पीते रहे। अब पॉकेट में मनी तो था नहीं, उन दिनों थोड़ा कड़के होते थे ये जो नौजवान लड़के होते थे भाई। फिर एक खूबसूरत लड़की जो मिस यूनिवर्सिटी रह चुकी थी और अच्छे खासे घर की पैसे वाली थी, उसके पर्स से बड़ी सफाई से हमने 10 रुपये का नोट निकाला, हाँ, और हमने कहा बिल आएगा तब दे देंगे। तो भाई वो सब चाय पी रहे, हंस रहे, आज तो कमाल हो गया भाई, रवि जैसे कंजूस ने सबको कॉफ़ी पिला दी। और मैंने कहा पियो पियो, अपना क्या है, ये कॉफ़ी भी आपकी, धन भी आपका, पुण्य भी आपका, अपनी तो बस हवा हवा है। और मैं किताब से हवा करने लगा उनको, कहते ये क्या कर रहे हो, ये बताने के लिए कि ये कॉफ़ी भी आपकी है, स्नैक्स भी आपकी, अपनी तो बस हवा हवा है, खाली हवा। और उसके बाद कॉफ़ी पी के चले, जब बाद में कहती है मेरे दस रुपये गायब हो गए। मैंने कहा चोर समझा क्या, एक तो कॉफी पिलाओ ऊपर से इल्जाम लगवाओ। भाई सब उसकी लड़की के मुंह की तरफ देख रहे थे कि एक शरीफ आदमी ने आज कॉफी पिला दी तो उस पर चोरी का इल्जाम। भाई ऐसी ऐसी शरारतें, वो कॉलेज के दिन, वो यूनिवर्सिटी के दिन, वो याद आते हैं। बाद में उस लड़की को बताया, अरे बताया क्या साहब, उसके साथ एक स्टेज पर प्ले किया, बहुत बड़ा अवार्ड उसे भी मिला, मुझे भी मिला, और उसके बाद तो भाई वो हीरोइन पक्की हो गई थी यूनिवर्सिटी में। अरे साहब हम क्लास में कम और ऑडिटोरियम की स्टेज पर, ऑडिटोरियम के मंच पर ज़्यादा होते थे, एंजॉय करते थे एक एक पल, एक एक दिन, एक एक क्या कहते हैं भाई वो सब्जेक्ट क्लास में पढ़ाया जाने वाला। लेकिन मंच पर, स्टेज पर जो रिहर्सल्स करते थे और भाई जो परफॉर्म करते थे, दैट वॉज ग्रेट। आइए अब वो पुरानी बातों के भाई उस इतिहास से निकल कर जरा देखें कि पाउंड का रेट क्या चल रहा है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK आज एक पाउंड के बदले दे रहे हैं 127.75 रुपीस, 127.75 रुपये। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: यस बहनों भाई, और लाइका रेडियो नेटवर्क की लोकप्रियता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लोग अब ज्यादा सुन रहे हैं, और भाई सफलता की सीढ़ियां एक एक करके ये आपका रेडियो चढ़ता जा रहा है बुलंदियों को छूने के लिए। लेकिन भाई एक चीज और, आप खबरों का समय हो गया है वैसे, पर उधर जाते हुए पता चला है कि भाई मेनिनजाइटिस के केसेस होम काउंटीज में पाए गए हैं। रेडिंग में खासकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, दो जो हैं वो बीमार बताए जा रहे हैं, प्रभावित बताए जा रहे हैं। एक स्टूडेंट था वो जिसकी डेथ हुई है, और दो का इलाज चल रहा है, इलाके में एंटीबायोटिक्स बांटे जा रहे हैं, सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। तो भाई ये तो खबर है, और दूसरी खबर जो मेन छाई हुई है यूके में, वो तो प्रधानमंत्री के पद को लेकर है। श्रामर इज अनपॉपुलर, उसके मिनिस्टर्स भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता में भाई कमी आई है और उन पर दबाव है इस्तीफा देने के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे समय में इस्तीफा ठीक नहीं है, देश को हम ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमी को लाइन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कुछ उनके समर्थक भी हैं, पर भाई यहाँ प्रधानमंत्री के पद को लेकर के निरंतर उठा पटक चल रही है, और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, लेट्स फाइंड आउट थ्रू द न्यूज। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के समाचार सुनिए। ट्रंप के चीन दौरे का दूसरा दिन है, बल्कि उनका दौरा समापन यानी समाप्त हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं चीन से बहुत मुतासिर हुआ हूं, प्रभावित हुआ हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और चीन की सोच काफी मिलती जुलती है। अपने दौरे के दूसरे दिन या अंतिम दिन बीजिंग में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने प्रेस से बातचीत में ये बात कही। चीन के सरकारी कैंपस झोंगनान हाई में दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि बातचीत में व्यापार, ईरान और कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई डील हुई हो ऐसा नहीं भाई स्पष्ट किया गया है। उन्होंने ये जरूर कहा कि हमने कई ऐसी समस्याएं सुलझाई जिन्हें दूसरे लोग शायद हल नहीं कर पाते। भारत से आने वाली खबरों में, भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि गैस पेपर के नाम पर असली सवाल लीक हुए थे। भाई ये परीक्षाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो नीट परीक्षाएं होती हैं, और इनसे ही आगे चल कर के देश को चलाने वाले ऑफिसर्स या भाई वो सिविलियंस अधिकारी जो है वो चुने जाते हैं। लेकिन 2026 के नीट यूजी पेपर के लीक होने के बाद परीक्षाएँ रद्द करने का फैसला लिया गया है, और वो कहते हैं कि वो जो पेपर जो दिए जाते हैं ना शुरू में, मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया है कि अनुमानित यानी अंदाजे से कि भाई ये क्वेश्चन आएंगे, पेपर बांटे जाते हैं या बेचे जाते हैं, लेकिन उनमें असली परीक्षा पेपर जो है वो लीक हुए, और इसकी पुष्टि होने के बाद परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। अब उन्होंने बताया है कि अगला इम्तिहान 21 जून को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इलेक्शन ख़त्म तो मोदी की वसूली शुरू हो गई है। यानी इलेक्शन के दौरान सब चीज़ें ठीक ठाक भाव पर मिल रही थी, सस्ती थी, लेकिन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस फैसले की सख्त आलोचना की है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया, पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया है, वहीं सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। साथ में सोना ना खरीदने के लिए अपील की गई है, और सोने के इंपोर्ट पर भी जो है कहीं पाबंदी लगाई गई है, तो कुछ कुछ वो ड्यूटी बढ़ा दी गई है। शी जिनपिंग के ढलते अमेरिका वाले बयान पर ट्रंप की एक स्टेटमेंट आई है। शी जिनपिंग ने कहा अमेरिका अब ढलान पर जा रही, उसकी इकॉनमी ढलान पर है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस समय चीन के दौरे पर हैं, आज समाप्त कर रहे हैं दौरे को। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के एक बयान को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट किया है। दरअसल शी जिनपिंग कहते आए हैं कि पश्चिमी देश ढलान पर हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। हालांकि चीनी मीडिया इसे अमेरिका के संदर्भ में बताता रहा है, पश्चिमी देश नहीं अमेरिका। आज ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट किया। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जब अमेरिका को डिक्लाइनिंग नेशन यानी ढलता हुआ मुल्क बताया था, तब उनका इशारा मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडन के दौर की तरफ था। टालते रहो, एक दूसरे पर लाते रहो। भारत सरकार ने सोने के इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाने के बाद अब ड्यूटी फ्री गोल्ड इंपोर्ट के नियम भी सख्त कर दिए। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत इंपोर्ट और निगरानी से जुड़े कई नियम बदल दिए गए हैं। और एक बार फिर बता दें कि भाई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पद को लेकर के खींचातानी का दौर अभी भी चल रहा है और उनके अपने मिनिस्टर्स ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि स्टार्मर की लोकप्रियता, उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम हुई है। ही इज अनपॉपुलर, मिनिस्टर्स एडमिट्स। दैट्स द न्यूज भाई, ये थे आज के समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
3: 10:35 लाइका रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम रवि शर्मा के साथ। खबरें आप सुन चुके हैं, आइए अब लौट आइए संगीत की दुनिया में।

0: 1986 की फिल्म लॉकेट। उस फिल्म का गीत गा रहे थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथी। एंजॉय द म्यूजिक विद लाइका रेडियो नेटवर्क इन मनोरंजन प्रोग्राम।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स। जस्ट एड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Laika Gold
0: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट TravelHubWorld.com।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win

0: बरसों पहले भाई ये गीत रेडियो पर बहुत बजता था और मेरी माँ सुन के इसे कहती थी, ये क्या हो गया इस औरत को, क्या कह रही है, ये न्यारी होंगी न्यारी होंगी। आजकल की लड़कियां पता नहीं क्या हो गया, उनको शादी के कुछ ही महीने बाद बस अपना अलग चूल्हा चौका बसाने की बात करने लगती है, न्यारी होंगी। फिर मैंने समझाया कि न्यारी होगी नहीं, यारी हो गई, यार से कह रही है वो। भाई रेडियो पर सुने जाते थे गाने किसी दूसरे घर में किसी के यहाँ, और वो उड़ते उड़ते शब्द पहुँचते थे तो कुछ का कुछ समझते थे। लेकिन साहब इस गीत को सुन करके और मेरी माँ की वो बात याद करके कि न्यारी होंगी, ये टॉपिक आज के दिन पर बड़ा चिंतन का विषय बनेगा, क्योंकि आज है विश्व परिवार दिवस, यस वर्ल्ड फैमिली डे। और भाई भारत की तहजीब तो पूरे विश्व को एक परिवार मानती है। आज चिंतन में आप सुनेंगे परिवार का महत्व, और हमारे डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा जी का आलेख शामिल रहेगा चिंतन में। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, 11 बजे की खबरों के बाद होगा चिंतन।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और पैसे भिजवाना चाहे तो रेट नोट कर लीजिए भाई, आज एक पाउंड के बदले लैम फाई वाले दे रहे हैं 128.11 भारतीय रुपए, पाकिस्तानी 372.54, श्रीलंकन रुपए 434.39, बांग्लादेशी टकाज 163.76 एंड अफगान अफगानी 82.84।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: LIKA
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold Rate. The gold is sold at the rate of 111.84 pounds for 1 gram, and that's the rate today.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: Let's talk about the cricket, भाई टाटा IPL 2026 जोरों पर हैं, और जो कल मुकाबला हुआ इस टूर्नामेंट का, that was between पंजाब एंड मुंबई, पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। भाई इस मैच में मुंबई की जीत हुई, ये धर्मशाला के मैदान में खेला गया और 6 विकेट से मुंबई इंडियंस ने ये मैच अपने नाम कर लिया। और अब आज के मैच की बात करें तो साहब आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच टक्कर होगी, और ये टक्कर लखनऊ में होगी, लखनऊ में खेला जाएगा ये मैच। दोपहर 3 बजे मैच शुरू होगा, स्कोर के आंकड़े हम आपको बताते रहेंगे, बस जुड़े रहिएगा लाइका रेडियो नेटवर्क के साथ।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
3: ये है
2: लाइका गोल्ड।
4: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
5: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
4: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
5: And you didn't pay those massive roaming charges?
4: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
6: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: Travel in style ka vaada hai. Kahin bhi ghoom kar aaiye. Flights aur holidays ki best prices ke liye hamare paas aaiye. Apne early bird discount ke liye number milaiye 0208-954-0077. That's 0208-954-0077. Aapki man ki tasalli ke liye ye fully bonded hai.
5: Travel in style.
9: Travel in style.
5: Travel in style.
2: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
4: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
2: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
4: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. टीज एंड सीज अप्लाई.
11: प्रेम पास्ट अने फ्यूचर वच्चे अटकायलू एक दिल
12: ने शू लागे छे हूं या साचे वेडिंग प्लान करवा
11: वहाँ की चुकी लव स्टोरी स्टारिंग पूजा जोशी, परीक्षित तामलिया, भाविन भानुशाली, मिलोनी जॉनसा, अ फिल्म बाय ध्वनि गौतम, रिलीजिंग ऑन 15th मई.
13: आ फैमिली वाली फीलिंग ने मैं त्या बहुत मिस करी छे.
14: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स.
15: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट.
14: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स.
11: राम कृष्ण हरी. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4 5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Laika listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
6: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
0: आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाजें. सत्या फिल्म का ये गीत हमें ले जाएगा 11 बजे की खबरों तक. और भूलिएगा नहीं, खबरों के उस पार होगा आज का विचार यानी

स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे दौर में। पंद्रह मई शुक्रवार और भाई ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुआ है समय। वक्त हो गया है चिंतन का, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और बहन भाइयों, आज का विचार आज के दिन के साथ जुड़ा हुआ है। आलेख हमें भिजवाया है डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा जी ने वुल्वरहैम्पटन से। याद दिला रहे हैं कि आज 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, विश्व परिवार दिवस, फैमिली डे। भाई ये दिन 1993 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित किया गया, तय किया गया था, और 1994 से हर साल 15 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल फैमिली डे। भाई फैमिली वो इकाई है, वो यूनिट है जो पूरे संसार का आधार है। दुनिया चलती है परिवार से, परिवार ना हो तो ये संसार ना हो, बता दें आपको। बस जब दो आत्माएं मिलती हैं, जब वर और कन्या का संयोग बनता है, शादी के बंधन में बंधते हैं, तो फिर वो एक कमिटमेंट करते हैं कि वो वंश को आगे चलाएंगे, परिवार बनाएंगे और परिवार से इस संसार को समृद्ध करेंगे। भाई ये दिन जिसका उद्देश्य परिवार के महत्व, यानी फैमिली इंपॉर्टेंस, यूनिटी, प्रेम और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यस, टू गेट मैरिड एंड टू मेक फैमिली इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज योर कमिटमेंट। मैरिज इज नॉट ए फन। अब साहब, परिवार से बनता है संसार और आज विश्व परिवार दिवस है। अब भारत की तहजीब में तो पूरा विश्व एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, सबसे प्रेम करो, मिलजुल के रहो और तरक्की करो, भारत का संदेश रहा है बरसों से। फिर ऐसे में ये लड़ाई झगड़े, बैर विरोध, ये हथियारों की होड़ और ये छोटी छोटी बातों पर जोड़ तोड़ देशों के बीच, भाई आवश्यकता प्रेम और सहयोग की, त्याग और सम्मान की। जहां परिवार में प्रेम होता है ना, वहां जिंदगी में शक्ति और शांति दोनों बने रहते हैं। एक बार किसी ने महात्मा गांधी से पूछा कि समाज को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। गांधी जी ने कहा कि अपने परिवार में प्रेम और सम्मान बनाए रखिए। मजबूत परिवार ही मजबूत समाज, मजबूत राष्ट्र और मजबूत संसार बनाते हैं। परिवार में संस्कारों की महत्ता, मिलजुल कर रहने, एक दूसरे पर भरोसा करने, इन सब चीजों से बनता है परिवार। भाई कभी कभी एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझसे कोई पूछता है कि भाई तुम इंडियंस में परिवार जुड़े रहते हैं, काफी बड़े स्तर पर देखा है कि लोग जो है वो कोई 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी, 60वीं वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं। हम हैरान होते हैं इतने सालों से इकट्ठे, कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कहा सुनी होती है साहब, पर एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट इज द मैरिज, एडजस्टमेंट इज द की फॉर द सक्सेस ऑफ द मैरिज। घर केवल ईंटों से नहीं, प्रेम से बनता है संसार। माँ की ममता, पिता का साहस, यही है जीवन का आधार। दादा दादी की मीठी बातें, संस्कारों की अमृत धार, भाई बहन का स्नेह निराला, हर दुख करता है बेकार। जब मिलजुल कर साथ रहें हम, हर मुश्किल हो जाती पार, परिवार वही दीपक होता जो करता जीवन उजियार। छोटी छोटी बातों पर अलग होना, अलग होने की धमकी देना, सेपरेशन, डिवोर्स, भाई ये शब्द आपको बता दें कि भारतीय शास्त्रों में तो कहीं है नहीं, संस्कृति में तो है नहीं, बट इफ यू कम अक्रॉस टू सम केसेस दैट मे बी द इफेक्ट ऑफ द यू नो अदर कल्चर्स। वरना हम विवाह को ईश्वर की आज्ञा मानते हैं, और भाई जो अपने परिवार में एडजस्ट कर सकता है वो सारे संसार में एडजस्ट कर सकता है। कहीं भी जाइए दुनिया में, एडजस्ट होके दिखाइए, क्योंकि पूरा संसार एक परिवार है। और परिवार टूटने के कारण क्या होते हैं,
पति पत्नी में थोड़ी सी कहा सुनी हुई और बात अदालत तक पहुंच गई। अब कोर्ट में जज साहब कहते हैं कि देखो तुम्हारे दो बच्चे हैं, बड़े प्यारे प्यारे हैं, अगर तुम अलग हो जाओगे तो बच्चे किसके पास रहेंगे, ये सवाल उठेगा। फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो टूटेंगी बिखरेंगी, धन खर्च होगा, एक बार विचार कर लो, सोच लो। और उन्हीं दिनों में भाई बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे उसमें पेरेंट्स इवनिंग थी, कार्यक्रम आयोजित किया गया था, दोनों पति पत्नी पहुंचे, साथ साथ नहीं बैठे, खुद सीट छोड़ करके पति इधर पत्नी उधर, लेकिन स्टेज पर बच्चे इकट्ठे आए और बच्चों ने जो शब्द सुनाए उन शब्दों ने, उस एक गीत ने मम्मी डैडी को हिला दिया, यानी टूटे हुए बिखरे हुए परिवार को फिर मिला दिया। जब परिवार टूटता है ना, जब परिवार बंटता है ना, और जब बच्चों का या तो पिता से या माता से अलगाव होता है, उनकी क्या गलती है भाई, जवाब दीजिए।

0: एक बटा दो, दो बटे चार, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, पर नहीं बटा है और नहीं बटेगा मम्मी डैडी का प्यार। दोनों का प्यार चाहिए संतान को, औलाद को, बच्चों को। तो छोटी छोटी बातों पर मत बटिए, मत टूटिए, परिवार को जोड़े रखिए। आज है विश्व फैमिली डे, वर्ल्ड फैमिली डे यानी विश्व परिवार दिवस, और इस अवसर पर डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा जी का आलेख हमने प्रोग्राम में शामिल किया। आओ आज प्रण ये ले हम, न टूटे रिश्तों का व्यवहार, विश्व परिवार दिवस सिखाता, वर्ल्ड फैमिली डे सिखाता, परिवार से है सुंदर संसार। थैंक यू डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा जी, वुल्वरहैम्पटन से आपका चिंतन, आपका आलेख आज के चिंतन की शोभा बना। और बहन भाइयों, परिवार को जोड़े रखिए, पूरे संसार को जोड़े रखिए, यही है संदेश आज के दिन का। और इसीलिए भारत की संस्कृति सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, तो देशों को भी अपनी सरहदों पर शांति बनाए रखनी चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए, संस्कृतियों का आदान प्रदान होना चाहिए। विश्व परिवार दिवस, वसुधैव कुटुंबकम। भाई ये कुछ लोग इसको वासुदेव कुटुंबकम कहने लगते हैं। वसुधैव कुटुंबकम यानी संस्कृत का शब्द है वसुधा, यानी धरती, पूरी धरती को वसुधा कहते हैं। वसुधैव ये पूरी धरती ही एक परिवार है, पूरा विश्व एक फैमिली है। यह है संदेश आज के दिन का और भारतीय संस्कृति का। थैंक यू डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा। आज का चिंतन, आज का विचार बहनों भाइयों समेटते हुए याद दिला दें कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। और भाई अगला चिंतन आप अब आने वाले सोमवार को सुनेंगे। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन, चिंतन।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And send money to India with competitive rate by State Bank of India UK. याद दिला रहे हैं, रेट अच्छा है अभी भी। अगर आप अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो एक पाउंड के बदले SBI UK दे रहे हैं 127.75 रुपीस। You can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai.
1: Like a gold.
3: Like a gold.

0: क्रांति। और भाई आप शायद जानना चाहें कई लोग कि भाई क्रांति का शांति का मतलब तो आपको मालूम है शांति, लेकिन क्रांति होती है इनकलाब, बदलाव जिसको कहते हैं ना भाई। एक पूरी ताकत से आप किसी चीज़ को बदलने की कोशिश करें तो वो क्रांति कहलाती है। और क्रांति फिल्म, मनोज कुमार साहब की फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कई लोगों को पसंद आया भाई, एजाज भाई चैशम में सुन रहे हैं और वो हर गीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, थैंक यू एजाज। और नैना शाह, आपका संदेश भी रेगुलरली मिलता है, कहती प्लीज़ शेयर ऑन रेडियो यस्टरडेज एजाज भाईज, क्या था प्रिय रवि जी, प्लीज़ शेयर ऑन रेडियो यस्टरडे एजाज भाई सॉन्ग, खो गया है मेरा प्यार, गोविंदा के फादर अरुण आहूजा हैं और मेरी इन्फॉर्मेशन कॉपीड नहीं है। अच्छा सही है भाई, देखो मेरे लिए आप दोनों बहुत प्यारे लिसनर हैं मेरे, लेकिन जो बात सही, अगर आप कहती हैं कि वो गोविंदा के फादर ही हैं जो फिल्म कौन सी थी, हरियाली और रास्ता, खो गया है मेरा प्यार, उसका गीत जो है हमने कल सुनवाया था, कल दर्द भरे गीतों का दिन था, गीत बहुत बढ़िया था, प्रस्तुति अच्छी थी, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ क्योंकि वो आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं, सारी चीज़ें अच्छी थी और आप दोनों भी बहुत अच्छे लिसनर हैं, इसलिए भाई अब वो उन्होंने कहा था शायद वो आहूजा साहब नहीं हैं कोई और हैं, तो पता करना भाई आप बताना, और हमारे श्रोता बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे, वो अपने आप को करेक्ट करने में अपना क्या कहेंगे भाई, फ़ख्री समझेंगे। तो नैना थैंक यू वेरी मच, बताते रहा करें, उन्होंने बीएम व्यास कहा है तो कहते हैं कि बीएम व्यास ने फिल्म आवारा बरसात में नरगिस के फादर के रोल में इस तरह की भूमिका निभाई थी, लेकिन ये डेफिनेटली गोविंदा के पिता अरुण आहूजा जी ही थे। अरे भाई कोई भी हो, हमें कौन से उन्होंने अपनी फीस के पैसे देने हैं, तो जो मिला होगा वो अकेले डकार गए हैं लेकिन थैंक यू वेरी मच एजाज के लिए भी और नैना के लिए भी। और हंसा वोरा जी आपको आज कहते हैं गुड मॉर्निंग, हैव ए ब्लेस्ड डे, और आपको चिंतन बहुत पसंद आया है, साथ में आपने कुछ और भी लिखा है कि वंडरफुल शो एंड एक्सीलेंट चॉइस ऑफ सॉन्ग्स। मैं क्या करूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं क्या करूँ, आई टेल यू, मैं हंसा जी आई एम माई नंबर वन फैन, क्षमा कीजिएगा भाई, ये आपका बड़प्पन आपका प्यार है। और हरीश रोडा थैंक यू भाई, सुनीता शर्मा हैप्पी वर्ल्ड फैमिली डे टू एवरीवन, उल्लास टोरंटो में हैं, थैंक यू वेरी मच। और ये कौन है भाई, जे जे, थैंक यू वेरी मच जे जे साहब, आप भी परिवार पर अपनी टिप्पणी भेज रहे हैं, आज के चिंतन को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, और नारी का इस भाई परिवार को सफल बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। कौन कह रही हैं, एक नारी कह रही है, वत्सला जी थैंक यू वेरी मच, सहर रजनी और रंजन जी थैंक यू वेरी मच, अर्जन कीर्ति, कीर्ति हमेशा बढ़िया संदेश देती है, जय श्री कृष्णा गुरु जी, सो नाइस ऑफ यू, निर्मला जी, राजीव पटेल, नीला चौधरी, महेंद्र बजारिया, पम्मी सिंह स्लाव में भाई गीतों के साथ साथ हमारी खबरों की भी प्रशंसा लिखते हैं, जैस्मीन, जैस्मीन आपका संदेश मिलता रहता है, सो नाइस ऑफ यू, आप तो बाबा जी के दर्शन भी करा देती हैं। और भरत गंगाराम थैंक यू भाई, सो नाइस ऑफ यू, प्रकाश सूतर जी, और ये वनीता, ये इतनी हैंडसम तस्वीर किसकी है, जो फोटो आपने भेजी सचमुच बहुत ही हैंडसम मैन है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रवि शर्मा हो, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच भाई, आपने धन्यवाद भेजा है उस संदेश के लिए जो हैप्पी बर्थडे का पैगाम आपने रिकॉर्ड कर लिया था। और कौन है, रोजी हैं, हाँ है ना, हेतल हैं, सोलंकी परिवार, नीलम हैं, और वियाना में अनिल सोनी जी हैं, और कराची में जहीर खान भाई हैं।
1: This is like a gold. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: गांव में चोरी हो गई। अब साहब पुलिस को चोर की तलाश और मिल नहीं रहा है, तभी भीड़ में से एक नौजवान निकल के आया, कहता आई कैन टेल यू, बताओ बताओ बताओ, सब ने घेर लिया भाई, पुलिस वाले भी नज़दीक आ, बोलो हाँ बताऊंगा, मुझे पता है किसने चोरी की है, अरे बताओ ना भाई, तो कहता कान में बताऊंगा, थानेदार के कान में कहता सर मुझे ये किसी चोर का काम लगता है, कर लो बात भाई, शरीफ आदमी चोरी थोड़ा ही करेगा, काम तो चोर का ही है। हमसे पूछो, हमको पता है चोर का नाम और चोर का काम।

0: Track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Like a extra podcast update.
3: और बहन भाइयों, लाइका एक्स्ट्रा पर नया एपिसोड आ गया है। पॉडकास्ट का नाम है, टाइटल है इंडिया वीक शोकेस, होस्टेड बाय अनुज राडिया। एंड टॉकिंग पॉइंट्स हैं भाई उसमें कि जो लाइका रेडियो नेटवर्क है ना, आप जानते हैं कि ऑफिशियली रेडियो पार्टनर्स ऑफ इंडिया वीक फ्रॉम 26 मई टू 31st ऑफ मे, फ्रॉम 26th मई टू 31st मई। अब बात यह है कि इसमें काफ़ी कुछ मसाला है जो आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है, पर इसके अलावा हमारे और जो पुराने एपिसोड्स हैं वो भी आपको लाइका एक्स्ट्रा पर उपलब्ध रहेंगे, मिलेंगे। जो पिछले एपिसोड्स हैं, वेडिंग्स एंड बियॉन्ड, सम वो होम स्कूलिंग एंड डिबेट, विल्सन प्रोबेट, तो ये सब उपलब्ध हैं, ज़रूर देखिएगा और काफ़ी कुछ जानकारी है लीजिएगा। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Travelhubworld.com

0: शब्दावली भले ही कैसी हो भाई, जब वो मुकेश जी के कंठ से फूटती है तो ये विशेष संगीत बन जाता है।
1: बेदेखे आराम नहीं,
0: और देख ले तो फिर चैन नहीं।

0: बड़े सॉन्ग अपने जमाने का और हर जमाने का भाई हिट गीत कह सकते हैं आप इसे, पर शब्दावली भी देखिए, प्यार होता ही वही है जो अधूरा है, जो पूरा हो गया वो तो समझो पूरा हो गया, खत्म। आधा है चंद्रमा, राता जी, महेंद्र कपूर और आशा भोसले गा रहे थे ये गीत। भाई महेंद्र कपूर तो इस सप्ताह के कलाकार हैं, इसलिए उनकी आवाज़ में तो और भी गीत आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बताने वाले हैं कि आज 15 मई को किसका जन्मदिन है। एक तो भाई वो नाजिर हुसैन साहब, काफ़ी फिल्मों में पिता के रोल में वो नज़र आए थे, उनका आज बर्थडे है। वो 15 मई और 1922 में जन्मे थे। और आज जन्मदिन मनाने वालों में कुछ और नाम हैं कोई नहीं मेरे पास तो भाई, इज इट, आई एम नॉट श्योर कि प्रीति गांगुली का जन्मदिन है या नहीं, पंकज उधास, कई नाम सामने से गुजर रहे हैं, लेकिन एक बात पक्की है, जो गीत हमने आपको सुनवाया ना, ये गीत याद दिला रहा है हमें महिपाल की, अपने ज़माने के बड़े भाई वो टॉप एक्टर होते थे, और ख़ासकर फिल्म संपूर्ण रामायण ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बनाया, क्योंकि जो फिल्में नहीं देखते थे, जो सिनेमा को बुरा मानते थे, वो भी संपूर्ण रामायण को देखने के लिए सिनेमा हॉल में ऐसे प्रवेश करते थे जैसे मंदिर में एंटर कर रहे हों। महिपाल की आज पुण्यतिथि है, उनकी बरसी। ही डाइड इन 2005, लेकिन भाई उससे पहले आई थिंक नवरंग और जबक, माया बाजार, पारसमणि, ऐसी ऐसी फिल्में उन्होंने दी, और इसलिए आज याद किए जाते हैं। मणिपाल चंद्र भंडारी, दैट इज़ द पूरा नेम, उनका पूरा नाम। देशराज बैसन साहब, बहुत सारी जानकारी आपने भेजी है भाई, प्रोग्राम में सारी तो नहीं शामिल कर सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि बड़ी सॉलिड जानकारी है। और महिपाल नाम से वो प्रसिद्ध थे, लेकिन पूरा नाम था उनका महिपाल भंडारी। और भाई उन, मेरा ख्याल है वो 86 की उम्र में, 86 बरस की उम्र में मुंबई में उनका निधन हुआ था, आज के दिन 15 मई 2005 में। याद कर रहे हैं उन्हें इस गीत के माध्यम से, और जन्मदिन नाजिर हुसैन साहब का। और भाई अगर आपके घर परिवार में भी किसी का जन्मदिन है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK आज एक पाउंड के बदले 127.75 रुपए दे रहे हैं। इफ यू वांट टू सेंड मनी टू योर डियर एंड नियर, सो जो है 127.75 रुपीज इज द रेट अगेंस्ट पाउंड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.state Bank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like a gold.
3: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
7: Relax, I've booked the Uber already.
6: But how? My roaming isn't even working yet.
7: I switched to Simsy before we left London.
6: Simsy? Since when are you the tech expert?
7: Since I decided I want a stress-free holiday.
8: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
9: T's and C's apply.
2: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
9: In Dubai.
6: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
3: Atif Aslam live in the UK.
6: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
3: Book your tickets now at AXS.
6: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio.
10: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
11: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: This May, Spring Madness is live at iTech Wholesale from 11th to 17th May. Massive deals, unbeatable discounts and top brands like Taj, Trophy Rice, Tilda, VT, Kohinoor, Ashirvad and Ahmed Tea. Plus, Amira Frozen, Royal Forest, quality ice cream and fresh fruit and veg at crazy prices. Free food tasting on 13th and 14th. Free membership, free parking. Open 24/7.
13: Travel in Style specialise in holidays to Sri Lanka. We offer tailor-made packages to suit your needs. Match your style with Travel in Style. Call 0208 954 0077. That's 0208 954 0077. Fully bonded, Travel in Style. Travel in Style. Travel in Style. Travel in Style.
14: Psst. You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up and
15: it could be you.
14: Yeah, what he said. Lotto, from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
16: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और भाना भाई आप जानते हैं कि इस सप्ताह के कलाकार का नाम है महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर बड़ी बुलंद आवाज की भाई गायक कलाकार और शुरुआत उन्होंने भी भाई शास्त्रीय संगीत से की थी। बहुत सारे गीत आपने सुने इस सप्ताह मेरे अपने प्रोग्राम में, कई गीत उनके बज चुके हैं आज। महेंद्र कपूर इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक। ऐसे कलाकार जो दुनिया से चले गए हैं पर गीतों में मौजूद हैं, यादों में मौजूद हैं।

0: महेंद्र कपूर अपनी आवाज के माध्यम से आज भी जिंदा हैं, शाश्वत हैं, क्योंकि स्वर ईश्वर है, ये कभी नहीं मरता। लता जी की आवाज के साथ उन्होंने आवाज मिलाई इस गीत में, एंड दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म जब याद किसी की आती है, धर्मेंद्र और मारा सिन्हा की फिल्म 1967 में आई थी।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

कहते हैं कि भाई वीकेंड पर पंकज उधास का जन्मदिन है, भाई उस दिन हम तो होंगे नहीं, या वीकेंड पे मैं नहीं होता हूँ, लेकिन पंकज उधास मेरे दिल में और आपके दिलों में रहते हैं।

0: वॉइस ही वॉज ब्लेस्ड विद पंकज उधास। भाई वैसे तो संगीत इनके परिवार में रचा बसा है, निर्मल उधास भी गाते हैं और मनहर उधास तो बहुत सारी फिल्मों में अपनी धाक जमा चुके हैं, लेकिन पंकज उधास ने वो चिट्ठियाई गीत से बहुत लोगों को रुलाया था। भाई इनका बर्थडे पड़ता है 17 मई को और 17 मई को हम होंगे नहीं यहाँ, इसलिए एडवांस में आज उन्हें याद कर लिया हमने। ही वॉज बॉर्न ऑन 17 मई 1951। पंकज उधास की भाई प्रशंसकों के लिए गीत हमने प्रोग्राम में शामिल किया और अब क्या एक सूचना है हमारे पास आप तक पहुंचाने के लिए। एक तो ये कि भाई लाइका रेडियो नेटवर्क हैज़ कन्फर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन, डिटेल्स एट laikaradio.com। और भाई लाइका रेडियो नेटवर्क इज द कन्फर्म्ड पार्टनर ऑफ कुमार सानू लाइव कॉन्सर्ट एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन बैंक हॉलीडे मंडे 25 मई। भाई रॉयल एल्बर्ट हॉल जो है वो इतना प्रतिष्ठित हॉल है कि उसमें एक बार हमने श्रिया घोषाल और उदित नारायण का शो करवाया तो उदित भाई कहने लगे कि रवि जी इस हॉल में शो करना मेरे लिए गौरव की बात है। और फिर उन्होंने उसके कई कई इस कॉर्नर में, कभी स्टेज पर एक कॉर्नर में, कभी दरवाजे के पास खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाए और दैट वॉज द मेमोरेबल जो प्रेजेंटेशन बाई उदित भाई एंड श्रिया घोषाल, तो बहुत अच्छा लगा था। तो वहां पर अब परफॉर्म करने जा रहे हैं कुमार सानू।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली।
2: हैप्पी हलवाई ब्रिंग्स योर टेस्ट बड्स ओडल्स ऑफ हैप्पीनेस विद ऑथेंटिक गुलाब जामुन, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू एंड मच मोर। विजिट happyhalwai.com।
3: ये है लाइका गोल्ड।
4: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: तेरे मिलने को ना आएंगे सनम आज के बाद। भाई सावन कुमार मेरे घर पर आए, हमने घंटों बातें की बैठ करके। ये उनका लिखा गीत आप सुन रहे थे उनकी फिल्म हवस से, और गीत लिखा सावन कुमार ने, और ये भाई संगीतबद्ध किया इसे उनकी पत्नी उषा खन्ना जी ने। और सावन कुमार ने कई गीत लिखे, बाद में ये सेपरेट भी हो गए, लेकिन काम साथ करते रहे। कई फिल्मों में इन्होंने जो डायरेक्ट की वो फिल्में या इन्होंने गीत लिखे, संगीत उषा खन्ना का ही रहा। और ये था हवस फिल्म का गीत। सावन कुमार 1936 में जन्मे थे और 2022 में उनका निधन हुआ, लेकिन उससे ठीक पहले वो आए थे, मुलाकात हुई घर पर उनसे, और उनके जन्मदिन पर मैं उन्हें फ़ोन किया करता था। तो लास्ट टाइम जब उन्हें फ़ोन किया 9 अगस्त 2022 को, तो मैंने ऐसे ही पूछने लगा, भाई बता दो कितने साल के हो गए। कहते हैं बस समझ लो जितने के हो गए पूरे हो गए। ये नहीं पता था भाई उनके मुख में सरस्वती निवेश कर रही है कि वो जो कह रहे हैं वो होने वाला है। और उसी महीने 25 अगस्त को उनका निधन हो गया अपने सावन कुमार साहब का। उनकी फिल्म का गीत सुनवाया, तो आज सावन फिर से आएंगे, वो क्या कहते, सावन की यादें आएंगी, सावन के गीत आएंगे और सावन साहब याद आएंगे।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. ये है Lyca Gold.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
5: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to

0: का लिसनर्स गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, यूज कोड लाइका 10 वाद्य महोत्सव 2026, फील द बीट, लिव द लेगेसी.
1: Discover the best of the Portugal with the fantastic Lisbon and Porto Twin City Centre Break with Skylord. Fly from the UK and spend 3 nights exploring vibrant Lisbon with its historic streets, trams and riverside views. Then travel by train to beautiful Porto for 3 more nights, discovering its famous wine cellars and charming old town. Skylord prices start from just £339 per person. For multi-centre city break packages with a difference, see skylordcruiseandholidays.com.
2: Call 01923883
3: પ્રેમ પાસ્ટ અને ફ્યુચર વચ્ચે અટકાયેલું એક દિલ.
4: તમને શું લાગે છે? હું અહીંયા સાચે વેડિંગ પ્લાન કરવા આવી છું.
3: વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરી સ્ટારિંગ પૂજા જોશી, પરીક્ષિત તામલિયા, ભાવિન ભાનુશાલી, મિલોની જોન્સા, અ ફિલ્મ બાય ધ્વની ગૌતમ, રિલીઝિંગ ઓન 15th May.
5: આ ફેમિલી વાળી ફિલિંગ ને મેં ત્યાં બહુ મિસ કરી છે.
6: લાઇક અ રેડિયો નેટવર્ક, પ્રાઉડ હોસ્પિટાલિટી પાર્ટનર, રાગસાન. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our 4 stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
7: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
8: और लीजिए साहब, टेस्टी ट्रैक सुनवाते हैं आपको. कई लोगों ने शिकायत किया, रवि साहब आप पुराने पुराने लोगों को तो हैप्पी बर्थडे भी कह रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि भी बता रहे हैं, लेकिन आपने माधुरी आंटी का जिक्र नहीं किया. माधुरी आंटी कौन सी भाई? माधुरी दीक्षित आंटी काय को कह रहे हो भाई? अभी इतनी बुजुर्ग नहीं है वो, मुझसे कोई ये 20-25 साल बड़ी हैं. आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. मेरी मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू माधुरी दीक्षित.
9: चोले में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा.
8: 15th में 1967 में जन्मी थी माधुरी. थैंक यू करसन जी. भाई सुनवाने को मन तो मेरा करता था लेकिन शर्म आती थी. अब आपने कहा कि कोई धार्मिक गीत लगाओ उनकी फिल्म का. अब धार्मिक गीत आपने ये कहा कि ये लगा दो चोली के पीछे, क्या है ये धार्मिक कहाँ से हो गया भाई? बोले धार्मिक है, इसमें राम जी का नाम आता है. क्या क्या उठा के चलूं राम जी.

भाई ये कुक कुक कुक कुक मुझे याद दिला रहे हैं कि भाई प्रोग्राम खत्म करके जाके कुकिंग भी करनी है। पत्नी की ओर से धमकी मिली है कुकिंग करनी है। बेटा कहता पापा मैं शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों बेटा? पापा मुझे डर लगता है, सुना शादी के बाद आजादी छिन जाती है। बीवी कहती है कुक कुक कुक कुक कुक कुक कुक कुक

0: अरे नहीं बेटा, कोई आज़ादी नहीं छीनती है। देख मुझे देख ले, मेरी क्या पूरी तरह आज़ाद हूँ? अपनी मर्जी से मैं बर्तन धोता हूँ, अपनी मर्जी से मैं हुवर करता हूँ, अपनी मर्जी से पोछा लगाता हूँ। आज़ादी, पूरी तरह आज़ाद हूँ। और राजेंद्र राजी, थैंक यू वेरी मच, आप भी सब कुछ अपनी मर्जी से करते हैं, मुझे पता है। सत्यनारायण सैनी इंडिया में हमें सुन रहे हैं, वहाँ से मैसेज भेज रहे हैं। और भाई और कौन कौन सुन रहे हैं? ये फरीदा गुलाम अली कहती है वो गीत मेरे नाम कर दो, कौन से वाला? वो आधा है चंद्रमा। ऐसा है फरीदा जी, आपने पिछली पेमेंट भी नहीं की अभी तक, गीत सारे अपने नाम किए जा रही हैं, बिल नहीं चुका रही हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप लिसनिंग। और महेंद्र बरजारिया जी, सो नाइस ऑफ यू, भाई गीत पसंद कर रहे हैं आप, ये बात मुझे पसंद आ रही है। आप सबके नाम हैं एक एक गीत, गीत का एक एक शब्द। हाँ पढ़ेंगे पीछे। कुछ मत कर।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और साहब रेट सुन लीजिए उनके, फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 128.04 इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी 372.36, श्रीलंकन 438.57 और बांग्लादेशी टके 164.09, अफगानी 83.26।
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: गोल्ड के बारे में बता दें आपको, द गोल्ड इज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 109.78 पाउंड्स पर ग्राम।
3: गोल्ड रेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय पूजा स्वीट्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वेजिटेरियन फूड सप्लायर्स, PoojaSweets.com और विजिटर्स एट ईस्टहैम, हाउंसलो और क्राउली। Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. India cricket score updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: Cricket ki baat karein bhai, Tata IPL 2026. क्या कहें भाई, अपने चरम पर है। और पहले तो बताएं कल के मैच में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को हरा दिया 6 विकेट से। दोनों टीमों ने 200 से ऊपर स्कोर किया था, लेकिन साहब मैच जीता मुंबई इंडियंस ने एक गेंद के रहते 4 विकेट गंवाकर। और आज का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब से करीब 2 घंटे बाद शुरू होगा, यानी दोपहर बाद 3 बजे मैच शुरू होगा। और बहनों भाइयों, ये मैच खेला जाएगा लखनऊ के मैदान में, पर स्कोर के आंकड़े यहाँ आपको बताए जाएंगे, सुनवाए जाएंगे। लाइक रेडियो नेटवर्क पर सुनते रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा म्यूजिक एंड क्रिकेट।
3: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK Limited इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
2: ये है Like a Gold
4: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति। पुरुषोत्तम मैच में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए। 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्री मठ भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के 1000 नामों के साथ। साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदर कांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक। स्थान 22 मामस्टन रोड हेरो HA3 7RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208426067। 1818 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट.
5: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
6: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
5: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
6: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
5: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
6: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ अमेनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
5: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
6: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Sabrang Arts presents Ramjhat in association with Laika Radio Network on Saturday 30th of May at 7 PM. Join us at the Millennium Center, Waldingham School, CR37YA for a joyful journey into the heart of Gujarati music and dance. Timeless Garba, cherished folk songs and stunning live dance performances. An evening where music unites and traditions shine. Book now at ticketsource.co.uk or call 07976869444.
8: तूने क्या कर रहा है रे?
9: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
8: ये तो बताओ, कोई पता चला?
9: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
8: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र.
9: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208514500. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
11: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Laika Gold.
12: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
13: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
12: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
13: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
12: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
13: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
12: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 or visit meraboiler.com. T's and C's apply.
15: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
16: हल्के फुल्के moments को और भी खास बनाएं Jammin Snacks के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ.
17: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट Jammin पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल.
16: Jammin पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
0: और बहनों भाइयों, याद दिला दूं कि रवि शर्मा के कार्यक्रम को समेटने के बाद सरिता सबरवाल आपकी मेज़बान होंगी और वो जगह भरेंगी बाली ब्रह्म भट्ट की, जो आजकल छुट्टियों पर हैं. अब भाई कार्यक्रम समेटने से पहले विमल रायन साहब, थैंक यू वेरी मच. आप कहते हैं कि हम आपके साइलेंट लिसनर हैं. अरे नहीं, आप दिल में धड़कते हैं, दिल बन करके, धड़कन बन करके. थैंक यू वेरी मच, आपकी आवाज़ हम महसूस करते हैं. और आप कौन हैं जी? मधु जी, आपका संदेश मिल गया सर आँखों पर, थैंक यू. और आप हैं जहीर खान कराची वाले, लिखते हैं आपने वो यूनिवर्सिटी वाली बात बताई कि आपने उसकी लड़की के पर्स से 10 रुपये निकाले. आपको कैसे पता था कि उसके पर्स में पैसे हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए वेरी गुड क्वेश्चन. भाई वो ऐसा है कि एक अच्छा चोर ना सारी खबरें रखता है, तजर्बे की बात है. देखिए इतना आसान नहीं है, वैसे बता दूं आपको, बड़ी मेहनत का काम है चोरी, ऐसे नहीं. हम जज ने भी पूछा था, मिस्टर चोर है, कैसे चुरा लेती हो तुम इतनी सफाई से लड़कियों के पर्स से पैसे? तो चोर ने कहा था, हुजूर यहाँ जल्दी में तो नहीं बता सकता, आज रात मेरे साथ चलो ट्रेनिंग दूंगा, आपको परफेक्ट चोर बना दूंगा एक हफ्ते में. थैंक यू वेरी मच। तो भाई जहीर भाई साथ चलो एक दिन मिलके चुराएंगे बांटने के बाद में। लीजिए भाना भाइयों कार्यक्रम समेट रहा हूँ और सरिता सबरवाल को स्टूडियो सौंप रहा हूँ। हमारी आपकी अगली मुलाकात होगी सोमवार को 10 बजे के खबरों के बाद। तब तक सोचिए और सोच के बताइए वीकेंड पर 2 दिनों के अंतराल में क्या कुछ जुटाऊँ आपके लिए, क्या लेके आऊँ।

0: जी हाँ, वेरी मच बाली जी का ही शो है, लेकिन इस वक्त हॉट सीट पर बैठी है आपकी अपनी सरिता सबरवाल। मुझसे पहले थे रवि शर्मा ऑन लाइका गोल्ड, एंड दूसरी तरफ लाइका रेडियो पर थी जन्नत, और अब वहाँ है विश, यहाँ है सरिता। आपका साथ निभाऊंगी टिल 4 o'clock, बैक टू बैक दो गाने। फर्स्ट लाइका गोल्ड,
1: लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स बैक टू बैक, स्पॉन्सर्ड बाय travelhubworld.com। फॉर द बेस्ट सर्विस एंड अनबीटेबल प्राइसेस विजिट travelhubworld.com। travelhubworld.com,
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।
0: ट्रेवल हब
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: लाइका स्प्रिंग हिट्स ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। पहला गीत था फिल्म दीदार से, 1992 की फिल्म थी, और 1992 की इस फिल्म में काम किया था अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, अनुपम खेर ने, एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रमोद चक्रवर्ती जी ने। संगीत था आनंद मिलन का। इस फिल्म के सारे गाने काफ़ी मशहूर हुए थे। एक गीत आज के प्रोग्राम में शामिल किया। कोशिश करूंगी कि आने वाले दिनों में भी इस फिल्म के गीत आप तक पहुंचाऊं। और दूसरा गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म जीवा। जीवा 1986 की फिल्म थी। हैव यू सीन द फिल्म? मैंने नहीं देखी है। संजय दत्त और मंदाकिनी ने इस फिल्म में लीड रोल किए थे। द फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाई राज एन सिप्पी, एंड इस फिल्म का संगीत दूर से पहचाना जाता है आर डी बर्मन साहब का। और गीत आपको पसंद आए दोनों के दोनों। आपने मेरे स्वागत में बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंचाए हैं, लेकिन मैं आप सबका स्वागत करती हूं। आपका खैर मकदम है, खुशामदीद, और मैं यही चाहूंगी जहां भी रहें आप खुश रहें, खैरियत से रहें, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय करते रहें। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो चेयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जियो शान से, मुस्कुराते गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए। गाने तो चुन चुन कर लाती हूँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के लिए। आपके मन को भा जाएं तो मुझे इशारा तो आपसे ज़रूर चाहिए, और इशारे के लिए व्हाट्सएप मैसेज भेजना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी जल्दी अपने अपने मैसेजेस मुझ तक पहुँचाते रहिएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, भी आज ये क्या रेट दे रहे हैं आपको बता दें सबसे पहले तो कि आज का रेट थोड़ा कम हुआ है, 127 रुपीस एंड 75 पैसा अगेंस्ट 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड। इंडिया में कहीं भी पैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए कराएंगे ट्रांसफ़र, तो आपको यही रेट मिलने वाला है। पर डिपेंड करता है कितना अमाउंट करें, जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना अच्छा आपको रेट मिलेगा। और किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यू कैन यूज़ द ब्रांच, वाया ब्रांच करें ऑनलाइन, या फिर यूजिंग योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: भी पहले दो गीत सुनकर शायद आपको पता चल चुका होगा कि कौन सा वर्ड दोनों गीतों में आपने सुना, तो शायद वही कुछ सिलसिला चलने वाला है। तो सोचते रहिए और मुझे बता दीजिए कि कौन सा वर्ड आपको लगा कि दोनों गीतों में था। और थर्ड गीत में भी, यस थर्ड सॉन्ग में भी वही गाना, वही वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन ये बता दूँ, ये प्रोग्राम जो कि बाली ब्रह्म जी पेश करते हैं मंडे टू फ्राइडे 1 to 4, दैट्स बीन ब्रॉट टू यू बाय
2: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me.
5: Southall Travel, at all protected.
6: Mum, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
7: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
6: So where do we find something like that now?
7: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
8: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4 5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
12: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
13: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
12: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
13: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
12: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
13: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
12: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
14: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
15: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
14: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
15: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
16: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All ATOL protected. Call 0207 132 0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
17: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. टीज एंड सीज अप्लाई.
18: साढ़े 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही.
19: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद.
20: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट.
19: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
21: Like a Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले Like a Gold और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे.
22: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: बात हो।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: और आपके मैसेजेस की तरफ एक नज़र करती हूँ तो इतने सारे मैसेजेस ऑन स्क्रीन हैं। महेंद्र बरजारिया जी साउथ एरो में, और आपने लिखा शंकर जैक्सन का संगीत बहुत खूबसूरत। उल्लास टोरंटो में, विनी विनोद एंड वरुण, थैंक यू अर्जुन एंड विजय गुदरुई गुदुरी इन सटन, मृदु जी, मिसिस पाके चियांग, हाना, भरत गंगाराम जी, पमी सिंह इन स्लाव, एजाज इन चशम, सुनीता शर्मा, अरुणा जी एंड आपके नाम नहीं लिखे हैं, रानी जी, जैस्मिन जी, गुरुदेव जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लंबी लिस्ट है पर बारी बारी आपकी भी बारी आ जाएगी।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: क्या?
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
2: भाई फियाज साहब आपने लिखा है कि अजाज साहब आपने लिखा है कि ये फियाज़ अहमद साहब की एक पोइट्री की लाइन है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, तो वो अगर हो सके तो प्रोग्राम में शामिल करना, आई विल डेफिनेटली ट्राई. थैंक यू एवर सो मच कि आप बड़े प्यार से प्रोग्राम सुन रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं. और अब एक सूचना, और उस सूचना कम है, आपको थैंक्स करना ज़्यादा है, क्योंकि आप ही की दौलत हम हैं. अगर आप अपने कान हमें उधार ना देंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते. थैंक यू सो मच. जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है, आप सभी का मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि बड़े प्यार से आप सुनते हैं और ज़्यादा देर तक सुनते हैं. यस, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें रेजार से मिली है. लेटेस्ट रेडियो लिसनिंग फिगर्स आर इन, एंड लाइका ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड स्टिल द नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क इन ग्रेटर लंडन. लाइका रेडियो एंड लाइका Gold remained consistent and with Like a Gold now being listened to longer than the other commercial Asian radio stations in the UK according to latest HR data. So thank you from bottom of my heart.
3: This is Like a Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Like a Group. Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a Gold.
2: और another classic गाना लता मंगेशकर एंड आशा भोसले, दोनों बहनें एक साथ.

0: for London at Breakfast and Drive.
1: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Two businesses,
5: same town,
4: same service.
5: One appears on page one of Google,
4: the other doesn't.
5: Guess which one gets the customer?
4: The truth is brutal.
5: The first page of Google gets the business.
4: Everyone else gets what's left.
5: So here's the real question.
4: When your customers search for what you sell, do they find you?
5: Visit heartyhanks.com and stop letting

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, we जल्दी से बता दें आपको करेंसी का रेट मार्केट में क्या चल रहा है. एक पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं इंडियन रुपीस 127.98, पाकिस्तानी रुपीस 371.74, श्रीलंकन रुपीस 437.78, बांग्लादेशी टका 163.83, अफगानीज 83.7 and US dollars 1.36.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: राइट भी गोल्ड का रेट भी जान लें कि आज बढ़ा है या कम हुआ. कम हो गया गोल्ड का रेट. इस वक्त मार्केट में गोल्ड का रेट है 109 pounds and 78 pence पर ग्राम.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Cricket Score Updates. India Cricket Score Updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Right, we IPL ke matches chal rahe hain. Aap sabhi achhi tarah se jante hain. Lucknow Super Giants and Chennai Super Kings, सभी सुपर हैं. सुपर किंग्स के बीच में मैच होने वाला है. आज 3 बजे शुरू होगा एंड दिस इज़ द 59th मैच जो होगा लखनऊ में. तो तैयार रहिएगा, आपको अपडेट करते रहेंगे हम. आप सुनते रहिए.
0: By Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England Cricket.
4: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat.
5: Bali Brambat.
4: Gem in Foods, bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
1: और वही अब मेरे साथी जो बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी पसंद का गीत कब आ रहा है. बहुत से मेरे साथियों ने इस गीत की फरमाइश मुझ तक पहुंचाई. अब मेरे से नाम मत पूछिएगा. आप जानते हैं ना कि सरिता थोड़ी सी भुलक्कड़ भी है और नाम इतने सारे नाम हैं, तो जिसका नाम लूँगी और जिसका नहीं लूँगी वो नाराज़ हो जाएंगे. तो नाम नहीं आपके लूँगी, लेकिन आप सबके मैसेजेस का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. और व्हाट्सएप मैसेजेस भी मैं आप सभी को भेज रही हूँ. आप इसी तरह से मेरा साथ निभाते रहें. इस आवर में आँखों की बात हुई, तो नेक्स्ट आवर में हम माधुरी दीक्षित जी का बर्थडे मनाएंगे. सो आप मेरे साथ साथ रहिएगा. एंड जो अगर आपकी कोई ख़ास पसंद हो तो आप मुझ तक पहुँचा सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि माधुरी जी की कौन सी फ़िल्म आपको बहुत पसंद आई थी और उस फिल्म का कौन सा गीत आपके दिल के बहुत करीब है. स्टे ट्यून्ड.
6: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line.
7: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.40% on non-withdrawable fixed deposits. Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
8: Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
9: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
8: Call today on 01923 883 100
9: or go to skylordcruiseandholidays.com.
8: Book with confidence.
9: We're Atoll protected.
5: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: अरे चंचल कुमारी, साइको ऑनर शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तुम?
11: खातून कौन थी?
12: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस।
11: तो पुलिस में जाती, वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल,
13: एक पति दो दो कंफ्यूजन और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट। 15th मई से प्रजापति पांडे मचाएंगे ऐसा बवाल कि आप भी पूछेंगे कौन पत्नी कौन वो, पति पत्नी और वो दो, इन सिनेमाज नेशनवाइड फ्रॉम द 15th ऑफ मई।
14: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, केटरर्स, फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑर्डर योर फ्री 2025 कैटलॉग टुडे, कॉल ऑन 0208 507 7900 or download the catalog from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
15: Ek badhiya kadak गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आए हाय मजा आ जाए।
16: अरे समझो, हो गया, रॉयल चाय है ना, अब भी बन जाएगी। सिर्फ पैकेट खोलो और गर्म पानी में घोल लो, चाय तैयार, वो भी रॉयल टेस्ट के साथ। रॉयल चाय, झटपट, कहीं भी, कभी भी।
17: प्रेम, पास्ट अने फ्यूचर वच्चे अटकाई लो एक दिन।
18: तमने शू लागे छे? हूँ यहाँ साचे वेडिंग प्लान करवावी छू।
17: वाकी चुकी लव स्टोरी, स्टारिंग पूजा जोशी, परीक्षित तमलिया, भाविन भानुशाली, मिलोनी जॉनसा, अ फिल्म बाय ध्वनि गौतम, रिलीजिंग ऑन 15th मे।
19: आ फैमिली वाली फीलिंग ने मैं त्यां बहुत मिस करी छे।
20: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
21: Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold. This is Leica.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और दोनों गाने पिक्चराइज हुए थे माधुरी दीक्षित पर, जो आज अपना बर्थडे मना रही है। हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई। एंड 15 मई 1967 में इनका बर्थ हुआ था। बॉर्न एंड रेज्ड इन मुंबई, माधुरी दीक्षित मेड हर एक्टिंग डेब्यू इन 1984 विद द लीडिंग रोल इन ड्रामा अबोत आफ्टर अ फ्यू अनसक्सेसफुल फिल्म्स कमर्शली, पर उनकी एक्टिंग को हमेशा ही पसंद किया गया था। पर उनकी फिर तेजाब ने हंगामा मचा दिया था। तेजाब में उनके एक तो तीन चार वाला गाना क्या कितना मशहूर हुआ, पर वो गीत आज ही सुबह आपने काजल के शो में सुना इसलिए मैं शामिल नहीं कर पाई। पर आपको मालूम है कि तेजाब में इनके काम को कितना अप्रिशिएट किया गया था। और थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। पहले तो ये बता दूँ, पहला गीत मैंने चुना हम आपके हैं कौन फिल्म से, और दूसरा गीत था फिल्म दयावान का। इनफैक्ट दयावान वो फिल्म थी, कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हुई थी इन 1988, जिसमें ये गाना ख़ास तौर पर बहुत मशहूर हुआ था। और इस फिल्म में ये गाना पिक्चराइज हुआ था। इनके साथ ही विनोद खन्ना, यस आई कैन विजुलाइज नाउ कि विनोद खन्ना थे इनके साथ। बहुत प्यारी फिल्म थी और इनका काम भी बहुत बहुत पसंद किया गया था। हम आपके हैं कौन का गीत जो मैंने आज के प्रोग्राम में शामिल किया, उस फिल्म के सारे गाने बहुत अच्छे थे। एंड दिस वाज राजश्री प्रोडक्शंस, फैमिली ड्रामा था हम आपके हैं कौन, ऑपोजिट सलमान खान, एंड द फिल्म मर्ज एज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ हिंदी सिनेमा एंड मेड कितने 135 बिलियंस रुपीस एंड वर्ल्ड वाइड इसने बनाए थे इतने पैसे, एंड ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ फिल्म शोले इन 1975 एंड इट बिकेम द हाइएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म आफ्टर इट्स थिएट्रिकल रन एंड हेल्ड द रिकॉर्ड फॉर 7 years, फेच हर 3rd Filmfare Award for Best Actress and for her 1st Screen Award for Best Actress as well. And the film won a National Award as well. Yes, the film won 2 National Awards, including the Best Popular Film Providing Wholesome Entertainment and the Millennium Edition of the Guinness Book of World Record. So, Madhuri Dixit ki acting ke baare mein kya kahun? She's so simple, she's so natural, she's a wonderful dancer, and उनकी आँखें बोलती हैं, उनके expressions बहुत खूबसूरत। थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि आप जानते हैं ना कि वक्त कितनी तेजी के साथ दौड़ता है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी, अगर इनके ज़रिए आप पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है। यू कैन यूज़ द ब्रांच, यू कैन गो ऑनलाइन और यूजिंग द योनो SBI मोबाइल ऐप। और आज आपको रेट मिल रहा है 127 rupees and 75 paisas अगेंस्ट 1 British sterling pound.
1: India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons.
3: Gold Afternoons.
2: Proudly sponsored by Jaimin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 0208574 8410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
6: Atif Aslam live in the UK.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
6: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: विल नहीं है ये रिस आपको नहीं लेना चाहिए कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं अभी कॉल करें 0208-907-2444 अपनी फैमिली को सिक्योर करें कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444
12: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
13: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142. Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All atoll protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
14: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: दिल तो पागल है इस फिल्म से चुना था मैंने इस गीत को 1997 में। ये फिल्म आई थी, शाहरुख खान थे हीरो और हीरोइन थी दो, माधुरी दीक्षित एंड करिश्मा कपूर दोनों को ही बेहद पसंद किया गया।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: ye hai Laika Gold 10:35 AM.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: और इस गीत के साथ ही इस फिल्म के इस गीत के साथ बन गई ये धक धक गर्ल।

0: संगीत के साथ बोलने की माफी चाहती हूँ। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ें थी और ये गाना अनिल कपूर एंड माधुरी पर पिक्चराइज हुआ था। फिल्म का नाम था बेटा। इस फिल्म में भी इनकी एक्टिंग लाजवाब थी।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
0: और साथ साथ आपको कुछ याद भी दिला दें, कुमार सानू लाइव। यस, लाइका रेडियो नेटवर्क इज द कन्फर्म्ड पार्टनर ऑफ द कुमार सानू लाइव कॉन्सर्ट एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन बैंक हॉलीडे मंडे। तो अपनी टिकटें बुक करा लें, 25 मई को ये शो हो रहा है। और मेला 26 के बारे में भी बता दें, द लाइका रेडियो इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ लेस्टर मेला अगेन ऑन 15th and 16th of August एट एबी पार्क। ऑल्सो द ब्रेड Food City Mela on 1st and 2nd of August at City Park and Century Square mein. So ye dates yaad rakhiye.
1: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
0: और यहीं मैं किशोर कुमार जी के सभी फैंस को भी एक सूचना देना चाह रही हूँ। कॉलिंग ऑल किशोर कुमार फैंस, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन, इंद्राणी, संजय एंड द 515 बैंड, एंड इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19th June एट द प्रिंस रिजेंट होटल चिगवेल एसेक्स में। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर कौन है? लाइका गोल्ड रेडियो। सो अपनी टिकट्स आज ही बुक करा लें।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Leica Extra Podcast Update.
0: चलिए भी एक बात और भी बता देती हूँ लाइका एक्स्ट्रा के बारे में। पॉडकास्ट एपिसोड 16 इज नाउ रेडी। इंडिया वीक शोकेस है एंड अनुज राडे इसे पेश करेंगे। ही इज़ द होस्ट। टॉकिंग पॉइंट्स हैं इनके, लाइका रेडियो नेटवर्क आर ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स ऑफ इंडिया वीक फ्रॉम 26th of May टिल 31st of May। एंड पुराने भी अगर आप देखना चाहते हैं एपिसोड्स तो वो भी रेडी हैं। वेडिंग and beyond, homeschooling debate and wills and probate, and Leica Extra podcast agar aapko nahi pata kahan dekh sakte hain to Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms par hum available hain.
1: Leica Extra is here. Ye hai Leica Gold.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट TravelHubWorld.com।
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
8: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
7: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई।
12: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
13: Just add hot water, wait for 5 minutes and taste the ethnic recipes like Sabudana Khichdi, Sheera, Poha, Bhaji, Veg Biryani, Dal Bhat are ready to serve on your plate.
12: Zero mess, no stress. Same ethnic taste with German foods.
14: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
15: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
16: Looking for your next cruise getaway?
17: Explore the Mediterranean, Northern Europe, the Caribbean, or even around the world. With Travelling Style, every trip is tailored to you.
16: From relaxation to adventure. Call 0208-954-0077
17: or email info@travellingstyle.co.uk.
16: 24/7.
17: Travelling Style.
16: Where your dream holiday begins.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, we bring you a special on India Week, hosted by Anuj Radia.
18: Saw Calpol Children's Medicine, and there was a little Indian girl on the box. Now, for me, that's a big change in how we're identifying and seeing ourselves. When my parents were shopping in Boots at that time for me, they would never have seen a little Indian girl on a box.
1: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms across London. This is Bally Brambat on Leica Gold.

0: फिल्म साजन से चुना मैंने इस गीत को, और माधुरी दीक्षित का काम इस फिल्म में भी बहुत खूबसूरत था। एंड माधुरी दीक्षित के साथ थे सलमान खान एंड ऑल्सो संजय दत्त। बहुत खूबसूरत फिल्म थी, अगर आपने नहीं देखी कभी भी मौका मिले तो ज़रूर देखिए। माधुरी दीक्षित हैज़ रिसीव्ड 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स फ्रॉम अ रिकॉर्ड 17 नॉमिनेशंस एंड इंक्लूडिंग 4 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर दिल इन 1990, बेटा के लिए 1992 में, हम आपके हैं कौन इन 1994, दिल तो पागल है इन 1997, एंड अ फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर देवदास इन 2002, एंड शी अर्न्ड अ फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड फॉर कंप्लीटिंग 25 ईयर्स इन द इंडस्ट्री, एंड इन 2008 शी इज अवार्डेड एज पद्मश्री, द फोर्थ हाईएस्ट इंडियन सिविलियन अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द arts, and 2023 May she was awarded the special recognition for contribution to Bharatiya Cinema Award. इतने सारे अवार्ड्स मिले लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड जनता का प्यार।
1: Currency updates are sponsored by Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 128.6, Pakistani rupees 371.81, Sri Lankan rupee 438.66, Bangladeshi taka 163.84, Afghanis 83.40 and US dollars 1.36.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download Lemfi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: And Gold Rate is worth market mein £109.78 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley. London, Midlands, Manchester. India cricket score of the Leica Radio Network. Brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: राइट भाई, 3 बजे मैच शुरू होने वाला है लखनऊ में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में, और हम आपको लखनऊ सुपर जायंट्स दे चूज टू फील्ड, सो मैच शुरू होने वाला है बस।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your

0: rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorised and regulated by the FCA.
1: और ये गीत मैंने चुना है फ्रॉम द फिल्म राम लखन. इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी इस फिल्म में भी, अंजाम में भी बहुत खूबसूरत एक्टिंग.

0: माधुरी दीक्षित जी को उनके बर्थडे पर हम बधाई देते हैं बहुत बहुत। उनकी यादगार फिल्मों में पुकार मुझे बहुत अच्छी लगी थी एंड आरजू में भी अक्षय कुमार एंड सैफ अली के साथ इन्होंने काम किया। बहुत सारी फिल्में हैं लेकिन सभी गीत नहीं शामिल कर पाऊंगी। और अब मैंने एक डायलॉग जैसे है पोइट्री रिसाइटिंग है जो माधुरी दीक्षित पर नाना पाटेकर ने किया था फिल्म वजूद में, तो वो हमें न्यूज़ तक लेकर जाएगी और न्यूज़ के उस पार मैं सरिता आप ही के साथ रहूंगी। सुनते रहिएगा।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक। माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
2: दिस ईद उल अज़हा, शेयर द जॉय नो मैटर द डिस्टेंस। व्हेदर यू आर नियर और फार, सेंडिंग सपोर्ट इज जस्ट अ टैप अवे। सेंड मनी विद वेस्टर्न यूनियन। एंजॉय जीरो ट्रांसफर फीस ऑन योर फर्स्ट ऑनलाइन ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट्स और मोबाइल वॉलेट्स। प्रेफर टू सेंड मनी इन पर्सन। वेस्टर्न यूनियन इज ऑल्सो अवेलेबल एट पार्टिसिपेटिंग पोस्ट ऑफिसेज, यूरो चेंज एंड अदर रिटेल पार्टनर लोकेशंस। डाउनलोड आवर ऐप टुडे और विजिट westernunion.com। दिस ईद सेंड मोर देन मनी, सेंड जॉय। Western Union makes money from currency exchange.
3: Mom, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
6: बोले तू ये क्या कर रहा है रे?
7: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
6: ये तो बताओ, कोई पता चला?
8: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
6: शाहरुख, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
9: शीघ्र शीघ्र।
8: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
10: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।

कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो। आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो मैं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें?

ये जो तुम्हारा रूप है ये जिंदगी की धूप है, चंदन से तरसा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन, ये शोखियां ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होठों में कलियां खिल गई, आंखों को चीले मिल गई, चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी, शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है क्या हाल है, ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां, बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरियां हैं ख्वाब की, कैसे बताओ मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की, कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताओ।

कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो। तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा। यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम, पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर चिन्ह में तुम, मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम,

0: माधुरी दीक्षित पर ही पिक्चराइज किए गए दो गीत और मैंने प्रोग्राम में शामिल किए। आज अपना बर्थडे मना रही है माधुरी दीक्षित। ये गीत था फिल्म कोयला से राजेश रोशन जी का संगीत, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ और पर्दे पर दिखाई दी थी माधुरी दीक्षित। और इस फिल्म के हीरो थे शाहरुख खान। अमरीश पुरी का भी बहुत बहुत अच्छा रोल था। सुभाष घई साहब ने बनाई थी ये फिल्म। एंड खतरों का खिलाड़ी वॉज द अदर फिल्म जिसका गीत आपने सुना। मोहम्मद अजीज़ एंड अनुराधा वाल की आवाज़ों में तुमसे बना मेरा जीवन, वो भी फिल्म बहुत खूबसूरत थी। उम्मीद करती हूँ कि सभी गाने आपको पसंद आ रहे हैं। अब आर्टिस्ट ऑफ द वीक में महेंद्र कपूर साहब बहुत जल्दी हम एक गीत सुनने जा रहे हैं उनकी आवाज़ में। एंड आई एक्चुअली कुडंट डिसाइड कि कौन सा गीत मैं शामिल करूँ फिल्म गुमराह का, पर जो मैंने चुना है वो गाना बहुत ही रुगी हमारे स्टूडियो से कभी प्ले नहीं हुआ है, तो मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूं वो गीत। लेकिन उससे पहले बहुत से काम और भी करने हैं, कुछ सूचनाएं हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी। महीपाल जी की आज डेथ एनिवर्सरी है, तो आज हम उन्हें भी याद कर रहे हैं। उनकी फिल्मों के कुछ एक गाने प्रोग्राम में शामिल रहेंगे और उम्मीद करती हूं कि आप इसी तरह से बड़े प्यार से मेरा साथ देंगे टिल 4 o'clock। 4 बजे के बाद सैंडी शाह आ रहे हैं ड्राइव टाइम शो लेकर, उनका भी साथ देंगे। तो तैयार रहिएगा सब कुछ सुनने के लिए। लेकिन आइए पहले जरा ये जान लें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं कहीं भी इन इंडिया, तो फिर आपके का काम बहुत आसान है। यू कैन गो टू द ब्रांच, यू कैन गो ऑनलाइन और बाय यू नो, अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है योनो SBI UK का मोबाइल ऐप, तो उसके ज़रिए घर बैठे ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज आपको रेट दे रहे हैं ये 127 rupees and 75 paisas अगेंस्ट 1 British sterling pound.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Like a Gold. Like a Gold.
3: Good afternoons with Bali Brahmbhat. Bali Brahmbhat is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Discover the best of Portugal with a fantastic Lisbon and Porto Twin City Centre break with Skylord. Fly from the UK and spend 3 nights exploring vibrant Lisbon with its historic streets, trams and riverside views. Then travel by train to beautiful Porto for 3 more nights, discovering its famous wine cellars and charming old town. Skylord prices start from just £339 per person. For multi-centre city break packages with a difference, see skylordcruiseandholidays.com.
7: Call 01923-883100. Atoll protected.
8: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
9: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra? We'll be right back.
7: Search is changing.
10: Customers aren't just using Google anymore.
7: They're asking AI.
10: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
7: One business, one recommendation.
10: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
7: Will your business be the answer?
10: Or the one that got left behind?
7: The future of search has already started.
10: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
7: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
11: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
12: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
11: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
12: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
11: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
12: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
11: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
12: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
13: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash in carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
14: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
15: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
14: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
15: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
14: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
15: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
14: કોલ 02089002323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
15: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
16: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
2: Like a Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे.
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं महेंद्र कपूर साहब. महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में मैंने फिल्म गुमराह का गीत प्ले करने की सोची है और आपने मुझे लिखकर भेजा है. और आप हैं देशराज जी, कहते हैं कि चलो एक बार, तो आई एम रियली सॉरी, ये गाना कल ही हमारे यहाँ से प्ले हुआ इसलिए मैं आज नहीं प्ले कर पाऊँगी. लेकिन जो गीत मैंने गुमराह का चुना है इसे भी आप ज़रूर पसंद करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है. आइए सुनते हैं.

0: रवि जी का संगीत, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़, फिल्म गुमराह से चुना था मैंने इस गीत को। यहीं मैं अपने, मुझे कमल जी आपने एक मैसेज भेजा है कि अगर मैं अपने सभी सुनने वालों को भी बता दूं तो ठीक है, बिकॉज इट्स अ फ्री इवेंट हो रहा है, इंडियाज मच लव्ड बुटीक लिट फेस्ट। खुशवंत सिंह जी के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, खुशवंत सिंह लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है, अ ट्रिब्यूट टू द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ अ लिटरेरी ल्यूमिनरी एंड रिटर्न्स टू लंडन एंड ऑक्सफोर्ड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अराइव्स इन सटन एज वेल। सो ये एन इनविटेशन टू सभी को, जो भी आना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। स्टोरी रिकनेक्ट होगी अस विद द नेचर, हेरिटेज एंड ईच अदर, and through literature let's revisit ecological wisdom and imagine a more harmonious फ्यूचर एज वेल। सो ये प्रोग्राम हो रहा है, बुक द डेट अभी कर लें, लंदन में सैटरडे 30 मई को, ऑक्सफोर्ड में ये होगा June 2nd एंड सटन सैटरडे को June 6th को ये प्रोग्राम होने वाला है, खुशवंत सिंह लिट फेस्ट और ये फेस्टिवल है। और डेट्स मैंने बता दिए हैं, देर इज़ नो फी, सो दो देर इज़ नो टिकट, सो कोई भी कहीं भी जा सकता है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, खुशवंत सिंह लिटरेरी फेस्टिवल लंदन 2026 8th एडिशन है ये। सो मुझे उम्मीद है कि आप सबने क्लियरली समझ लिया है इस मैसेज को। ओके, और अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे आर्टिस्ट जिन्हें हम ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं। पहले इनका एक गीत सुनते हैं इनकी फिल्म से, और फिर मैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी।
1: Feel good track, brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: अली बाबा और 40 चोर, इस फिल्म से चुना गया गीत मैंने प्रोग्राम में शामिल किया। इस फिल्म के हीरो थे महिपाल जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उनकी डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करें। महिपाल वॉज एन आइकॉनिक एक्टर इन मिथोलॉजिकल एंड फैंटसी फिल्म्स एंड नोन फॉर हिज फिल्म्स लाइक नरसिम्हा अवतार इन 1949, अलादीन और जुदाई चिराग एंड जादुई चिराग 1952 में, अली बाबा और 40 चोर जिसका गीत आपने सुना, माया बाजार इन 1958, नवरंग इन 1959 एंड संपूर्ण रामायण इन 61, जबक इन 61, पारस मनी इन 1963, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने काम किया। एंड महिपाल चंद्र भंडारी उनका पूरा नाम था, बेटर नोन एज हिज फर्स्ट नेम। महिपाल वॉज बॉर्न इन जोधपुर राजस्थान ऑन डिसम्बर द 24th in 1919 a rich Oswald Jain परिवार, business परिवार में, and his mother passed away when he was only 6 years old and he was raised by his grandparents and his father's business was based in Kolkata. So फिर वो फिल्में देखते थे, उन्हें इन शौक था बहुत ज़्यादा, पोइट्री का भी शौक था, स्कूल के ड्रामास में भी हिस्सा लेते थे and then वो उन्हें खींच लाया एक्टिंग की तरफ और एक्टिंग में फिर आगे चलकर उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया एंड डेब्यू जो किया था इन्होंने 1942 की फिल्म नजराना से किया था। पर मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी भूली बिसरी याद, सोचना नहीं आपने कि आप विंटेज गोल्ड प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इस वक्त बाली ब्रह्मा जी का ये शो और सरिता प्ले करने जा रही है एक बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म नवरंग से। उम्मीद करती हूँ आप पसंद करेंगे। और ये गीत आप तक कौन पहुँचा रहे हैं?
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: दिल जो मेरा बहका।
1: What a beautiful song. गाने के साथ बोलने की माफ़ी चाहती हूँ लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। आशा भोसले एंड मन्ना डे की आवाज़ें थी। आपको गाना बहुत पसंद आया, सभी के मैसेजेस मेरे सामने हैं। आपको बता दूं कि वी शांताराम जी ने जब अनाउंसमेंट की थी कि नवरंग के हीरो होंगे महीपाल ऑपोजिट संध्या, दैट क्रिएटेड अ क्वाइट बिग बज़। नवरंग वेंट ऑन टू बिकम अ ब्लॉकबस्टर, एंजॉयड अ सिल्वर जुबली रन एंड इट्स टाइमलेस म्यूजिक एल्बम। वाह वाह, सारे गाने, तू चुपी है कहाँ, आधा है चंद्रमा रात आधी एंड श्यामल श्यामल बरन और आ रे जा रे हट नटखट, वो वाला गाना भी बहुत खूबसूरत था। तो महीपाल जी को हम याद कर रहे हैं उनके गीतों के जरिए इन दिस प्रोग्राम।
2: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
3: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
5: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट TravelHubWorld.com।
6: Subrang Arts presents Ramjhat in association with Laika Radio Network on Saturday 30th of May at 7 p.m. Join us at the Millennium Center, Waldingham School, CR37YA for a joyful journey into the heart of Gujarati music and dance. Timeless Garba, cherished folk songs and stunning live dance performances. An evening where music unites and traditions shine. Book now at ticketsource.co.uk or call 07976-869-444.
7: Location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
10: Live in London.

0: सलामत रहो। पारस मनी से चुना था मैंने इस गीत को। 1963 की फिल्म थी जिसे बाबू भाई मिस्त्री ने डायरेक्ट किया था और विच वॉज ऑल्सो माइलस्टोन इन हिज करियर। महिपाल पेयर्ड अप विद द साउथ इंडियन एक्ट्रेस गीतांजलि इन द फैंटेसी फिल्म। और इस फिल्म के सारे गाने बड़े मशहूर हुए थे। और बता दूं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की ये पहली फिल्म थी जिसके लिए उन्होंने संगीत दिया। महिपाल हैड टू मेक अ मेजर चेंज इन हिज स्क्रीन persona and he went on to play character roles in films like Rani or Lal Pari in 75, Do Chehre in 77, and his last film role was in Amar Jyoti in 1984. He was married to Akal Kanwar and in 1940s, and he had two daughters. Mahibal died of a cardiac arrest in Mumbai on 15th May 2005, and inki age thi tab 86. आज हमने उनकी डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद किया। एक और गीत उन्हीं की फिल्म का आ रहा है, लेकिन उससे पहले
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: A pound in your pocket can get you today. Indian rupees 128, Pakistani rupees 371.79, Sri Lankan rupee 438.46, Bangladeshi taka 163.85, Afghanis 83.6.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: It's £109.79 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: से।
1: सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स,
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियाँ लाए।
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर।
3: दिस ईद उल अज़हा शेयर द जॉय नो मैटर द डिस्टेंस, व्हेदर यू आर नियर और फार, सेंडिंग सपोर्ट इज जस्ट अ टैप अवे। सेंड मनी विद वेस्टर्न यूनियन, एंजॉय जीरो ट्रांसफर फीस ऑन योर फर्स्ट ऑनलाइन ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट्स और मोबाइल वॉलेट्स। प्रेफर टू सेंड मनी इन पर्सन। वेस्टर्न यूनियन इज ऑल्सो अवेलेबल एट पार्टिसिपेटिंग पोस्ट ऑफिसेस, यूरो चेंज एंड अदर रिटेल पार्टनर लोकेशंस। डाउनलोड आवर ऐप टुडे और विजिट westernunion.com। दिस ईद सेंड मोर देन मनी, सेंड joy. Western Union makes money from currency exchange.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me.
6: Southall Travel, at all protected. CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our रेडियो।
7: चलो जाइए एक नवा सफर पर,
8: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रिकाना स्थलोनी मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नैरोबी, मुंबासा, जांजिबार आणि दारिसलाम साथे जिंजा आणि मचिसन फॉल्स।
9: बस पैक करो आणि रिलैक्स थई जाओ,
8: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
9: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
8: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
11: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
13: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
14: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स।
13: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
14: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
15: ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है, कहीं भी घूम कर आइए। फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए। अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 0208954007। That's 0208954007। आपके मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है।
16: Travel in style.
17: Travel in style.
16: Travel in style.
18: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208767-2142.
19: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS Swami Narayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
1: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
2: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
1: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
4: प्रेम पास्ट अने फ्यूचर वच्चे अटकायलू एक दिल
5: ने शू लागे छे हूं या साचे वेडिंग प्लान करवा
4: वाकी चुकी लव स्टोरी स्टारिंग पूजा जोशी परीक्षित तामलिया भाविन भानुशाली मिलोनी जॉनसा अ फिल्म बाय ध्वनि गौतम रिलीजिंग ऑन 15th मे
6: आ फैमिली वाली फीलिंग ने मैं त्या बहुत मिस करी छे
7: साढ़े 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तखत श्री हरमिंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही
8: ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है
9: कहीं भी घूम कर आइए फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 0208-954-0077 दैट्स 0208-954-0077 आपके मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है
10: ट्रेवल इन स्टाइल ट्रेवल इन स्टाइल ट्रेवल इन स्टाइल
11: दिस मेक स्प्रिंग मैडनेस इज लाइव एट आईटेक होलसेल फ्रॉम 11th टू 17th मे मैसिव डील्स अनबीटेबल डिस्काउंट्स एंड टॉप brands like Taj, Trophy Rice, Tilda, VT, Kohinoor, Ashirwad and Ahmed Tea. Plus, Amira Frozen, Royal Forest, quality ice cream and fresh fruit and veg at crazy prices. Free food tasting on 13th and 14th. Free membership, free parking. Open 24/7.
12: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah.
13: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@leicaradio.com
12: Leica Radio Final

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: Experience tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
3: मॉम ऑलवेज सेड, बेटा clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
4: Travel in Style specialise in holidays to Sri Lanka. We offer tailor-made packages to suit your needs. Match your style with Travel in Style. Call 0208 954 0077. That's 0208 954 0077. Fully bonded, Travel in Style. Travel in Style. Travel in Style. Travel in Style.
5: Ab London baithe milega Asian ethnic swad instantly thanks to Jamin Foods.
6: Just add hot water, wait for 5 minutes and taste the ethnic recipes like साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट.
5: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स.
7: नेक्स्ट अश्विनी इन फॉर अनीसा नासिर ऑन द इवनिंग शो ऑन लाइका गोल्ड. लाइका रेडियो फाइनलिस्ट एट द रेडियो एकेडमी आरियाज 2026.
8: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी. एंड इस शो में तीन अमेजिंग फीचर्स हमेशा की तरह आपके लिए लेके आई हूँ. भाई फ्राइडे है, फैंटास्टिक फ्राइडे. पूछिए आप सबसे कैसे हैं आप सब. बढ़िया है ना. बिल्कुल, जैसे ही मैंने गीत शुरू किया आप लोगों के मैसेजेस शुरू हो गए. क्या बात है, क्या धमाकेदार शुरुआत हुई है. मैंने पहले ही कहा है आप लोगों से कि फ्राइडे आरजे अश्विनी बन जाती है डीजे अश्विनी. आप अपने खाना वाना खा के बैठिए, सारी कैलोरीज हमको बर्न करनी है बिकॉज हैप्पी हैप्पी जोन में हम सब चले जाते हैं. चलो पूरा सप्ताह जैसा भी बीता हो, अच्छा बीता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बुरा बीता है तो ठीक है, कोई ना यार, समय है, बदल जाएगा, चीज़ें परमानेंट नहीं रहती कुछ भी, है ना. तो वैसे ही अभी जो है हम अपना मूड अपलिफ्ट करेंगे. अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है. ऑल माई साइलेंट लिसनर्स, दीदियों, भैयाओं, हैंडसम मैन दे, ओहो, एंड सुंदर सुंदर बालाएं, जरा फटाफट रजिस्टर में आके अपना नाम लिखवाएं. ओए ये तो कविता बन गई है ना. ओके आते से असाइनमेंट. पहला, ऐसे मत समझो कि अश्विनी गप्पे में लग गई तो आज कुछ असाइनमेंट देने वाली नहीं. बहुत रैंडम क्वेश्चंस पूछती हूँ ना मैं आप सबसे, मजा उसी में तो है. बहुत डीप क्वेश्चंस, उन पे भी बातें करेंगे, ऐसा नहीं कि उन पे बातें नहीं होने वाली, लेकिन रैंडम क्वेश्चंस पूछना भी तो जरूरी है. ओके अच्छा सच्ची सच्ची जवाब देना, ऑनेस्टली बिल्कुल. व्हाट इज योर फेवरेट वे ऑफ ईटिंग पोटैटो? आलू. ओके आलू बटाटा, आलू बटाटा वड़ा. नो आई नॉट गिविंग यू हिंट्स. चलो ठीक है हिंट ले लो. जैसे मुझे आलू किस फॉर्म में खाना अच्छा लगता है तो वो थिन स्लाइस की जाती है पोटैटो की. ओके आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चिप्स और द वेफर्स. थिन स्लाइस करके एंड जब उसकी सब्जी बनती है जो आप गर्मा गर्म पराठे के साथ खा सकते हैं, या बस ऐसी वो बोल या प्लेट में लेके बैठ गए और फिर एक फोर्क के साथ में वो एक एक स्लाइस उठा के रिलिश कर रहे हैं, वो जो टेस्ट होते हैं ना, सिर्फ मस्टर्ड सीड्स, जीरा, हिंग, उसके ऊपर हल्का सा गर्म मसाला, धनिया पाउडर, चाहिए तो हल्दी तो डालती है, चाहिए तो थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, बस इस टाइप की सब्जी. सी माई सलाइवरी ग्लैंड्स आर गेटिंग एक्टिव. एनीवेज सो आप लोग अपने फेवरेट फॉर्म ऑफ पोटैटो आपको कैसे अच्छा लगता है, कैसे खाते हो, फटाफट बताओ.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling today, you can get up to 127 Indian rupees and 75 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in win for £75 voucher every week when you send over £1,000. Also, 1 gram gold coin when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Like a gold. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मैस में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए. 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्रीमद् भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के हजार नामों के साथ. साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक. स्थान 22 मामस्टल रोड हैरो HA37RR. ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208426 0678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me or you.
6: Southall Travel, at all protected.
7: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
8: Atif Aslam live in the UK.
7: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
8: Book your tickets now at AXS.
7: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: Are we there yet?
10: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
11: Relax, I've booked the Uber already.
10: How? My roaming isn't even working yet.
11: I switched to Simsy before we left London.
10: Simsy? Since when are you the tech expert?
11: Since I decided I want a stress-free holiday.
12: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
13: T's and C's apply.
14: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
15: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
14: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
15: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
14: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
15: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
14: કોલ 02089002323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
15: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
17: प्रेम पास्ट अने फ्यूचर बच्चे अटकायलू एक दिल.
18: तुमने शू लागे छे? हूँ यहाँ साचे वेडिंग प्लान करवा.
17: वाकी चुकी लव स्टोरी स्टारिंग पूजा जोशी, परीक्षित तामलिया, भाविन भानुशाली, मिलोनी जॉनसा. अ फिल्म बाय ध्वनि गौतम, रिलीजिंग ऑन 15th में.
19: आ फैमिली वाली फीलिंग ने मैं त्या बहुत मिस करी छे.
20: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 02208767627.
6: Like a Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर, DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
21: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 28 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी। पहला आवर का जो फीचर है उसकी तरफ तो हम जा ही रहे हैं, यादों की बारात। लेकिन उसके पहले हम किसी से कम नहीं, इस फिल्म से आपको सुनाया ये लड़का हाय अल्लाह, आय हाय हाय क्या बात है। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत आप सबने सुना। एंड आप सबसे आज मैंने पूछा है कि पोटैटो यानी कि आलू किस फॉर्म में आपको खाना पसंद है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगा कि बस हम इक्का दुक्का चीज़ बता देंगे तो अश्विनी खुश हो जाएगी, शाबाशी देगी? नहीं नहीं, मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ यार, शाबाशी आपने मुझे कहा। इतने सारे आपने पोटैटो की वेरिएशन मुझे बता दी है कि मैं अपने घर पे वो सारी वेरिएशन बना के अभी अपने घर वालों को खिलाने वाली हूँ। और साथ ही सुधीर जी ने कहा कि अश्विनी जी मैं पोटैटो तो ज़्यादा नहीं खाता, मैंने नहीं खाया, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ पोटैटोज, लेकिन आपने जो रेसिपी बताई है वो हम ज़रूर बताएंगे बनाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, यही है कि देखिए जब हम कहते हैं कि हम एक परिवार हैं, म्यूज़िकल परिवार हैं, तो फिर परिवार में सिर्फ गानों की थोड़ी गप्पे होने वाली है ना, यहाँ पे तो खाना पीना मेजर। अभी तो किचन में कितने लोग घुसे होंगे, एंटर किया होगा कि आज क्या बनाया जाए। तो जो भी आप बना रहे हैं हंसते खेलते मुस्कुराते हुए डांस करते हुए बनाइए, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जो इंसान खाना बनाता है और जिस मंशा से, जिस मेंटालिटी से, जिस मूड से, जिस एनर्जी से वो खाना बनाता है, वो एनर्जी सामने वाला इंसान जो उस खाने को खाता है उसके साथ में वो रहती है। फनफील्ड, बिल्कुल एवरी इवनिंग 7 to 10 फनफील्ड प्रोग्राम आप लोगों के लिए इसीलिए मैं लेके आ रही हूँ। देखिए इसमें मेरा कर्मा अच्छा होने वाला है ना, मैं ज़रा ग्रेडी हूँ, सेल्फिश हूँ इस मामले में कि आप लोग अच्छे मूड में खाना बनाएंगे, दूसरे जो खाना खा रहे हैं वो भी अच्छे मूड में रहेंगे, कुल मिला के हम सब हैप्पी हैप्पी। नेक्स्ट ट्रैक आशा भोसले और आर डी बर्मन की आवाज़ में, फ्राइडे नाइट है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, मुझे लगता है ज़रा बढ़ा ही दीजिए वॉल्यूम।
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
0: The Evening Show with Ashwini.

0: इस आवर का जो फीचर होता है वो होता है यादों की बारात। यादों की बारात में 50s के एरा से यानी ब्लैक एंड वाइट एरा से आपको सुनाती हूँ मैं गीत। नया दौर फिल्म से लेके आई हूँ आज ये गीत एंड आई एम श्योर यादों की बारात में ये वाला गीत आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगले आवर में होगी कॉम्पिटिशन, तैयार रहिएगा जरा।
1: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: यादों की बारात।
1: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम है द इवनिंग शो विद अश्विनी। फुल ऑन मस्ती चल रही है आज। आलू पे इतनी बातें हो रही है ना कि आलू सोच रहा हो कि मेरे बारे में, सचमुच मेरे बारे में इतना भी कोई बात कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है आलू। यहाँ पे अश्विनी ने तुम्हारा नाम लिया और ना जाने तुम्हारे नाम से कितनी चीज़ें यहाँ बोली गई, क्या जानते हो तुम? आई नो, वेरी रैंडम है ना। उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी, आई लव दिस ट्रैक, क्योंकि देखिए ना, प्यार मोहब्बत में जहाँ पे जो चहीता इंसान रहता है उस गांव के सुअर के भी सदके, आहा, इमेजिन क्या प्यार की भावना रही होगी कि सुअर के ऊपर भी सदके। एंड द घुंघरू इसमें जब वो बजाते हैं ना, आई टोटली लव द म्यूजिक ऑफ दिस ट्रैक।
0: गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: Every morning a shopkeeper opens his doors.
4: Lights on, shutters up, staff ready.
3: But today's customers don't start on the high street.
4: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
3: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
4: They walk into your competitors.
3: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com.

0: डबल धमाका, कौन पत्नी कौन वो, सवाल बहुत है, आंसर्स और भी एंटरटेनिंग। पति पत्नी और वो दो परिवार के साथ देखिए 15th में से सिनेमाज में।
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट, लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
1: This week, Spring Madness is live at iTech Wholesale from 11th to 17th May. Massive deals, unbeatable discounts and top brands like Taj, Trophy Rice, Tilda, VT, Kohinoor, Ashirwad and Ahmed Tea. Plus, Amira Frozen, Royal Forest, quality ice cream and fresh fruit and veg at crazy prices. Free food tasting on 13th and 14th. Free membership, free parking. Open 24/7.
5: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
6: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
5: Call today on 01923 883 100
6: or go to skylordcruiseandholidays.com.
5: Book with confidence.
6: We're Atoll protected.
7: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
8: For £1 you'll get 127.82 Indian rupee, 371.19 Pakistani rupee, 437.61 Sri Lankan rupee, 163.56 Bangladeshi taka, 83.64 Afghan Afghani.
9: Leica Radio.
7: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
10: Leica Gold.
7: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
8: Gold is currently trading at £109.87 per gram.
7: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Ashwini, brightening up your weeknights.
11: India cricket score updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
8: चेन्नई सुपर किंग्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच हुआ जिसे लखनऊ सुपर जायंट्स वन बाय 7 विकेट्स।
11: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एफसीए। दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
8: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 48 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। तीन कमाल के फीचर्स। पहले आवर का फीचर यादों की बारात आप लोगों को सुनाया एंड क्या बात है, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, सभी ने बहुत बहुत पसंद किया। सेकेंड आवर की तरफ आप और हम बढ़ रहे हैं। इमोशन ऑफ द डे एंड ए फैंटास्टिक फ्राइडे आने वाला है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बहुत पसंद आने वाली आप सबको। एंड थर्ड आवर में गजल या कव्वाली क्या सुनाई गया जश्विनी। हाँ जी, तो हर एक गीत पे जब आप लोगों का फीडबैक आता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग

0: उन गीतों को पसंद कर रहे हैं। तो जो होमवर्क हम करके आते हैं, रिसर्च हम करके आते हैं, हमारे शोज को डिज़ाइन करते हैं, वो आप पसंद कर रहे हैं, ये आप लोगों के फीडबैक से बड़ा अच्छा लगता है सुन के। आलू के ऊपर बातें अभी भी चल रही हैं। आलू का आज जो कल्याणम हमने किया है हमारे इस शो पे, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। और जितने लोग अराउंड द ग्लोब जहाँ से भी आप लोग हमें ज्वाइन किए हैं, फ्राइडे हैं तो ऑब्वियसली मस्ती मज़ा इंटरेक्शन गपशप यहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सेकेंड आवर की तरफ बढ़ के और भी कुछ सवाल जवाब अश्विनी ज़रूर लेके आएगी, लेकिन अभी आराम से जो लास्ट ट्रैक है इस आवर का, मुकेश जी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगम फिल्म से हर दिल जो प्यार करेगा, है ना। आप और हम सभी प्यार करने वाले लोग इस म्यूज़िक को इतना चाहते हैं, तो इस म्यूज़िक के साथ बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। और इस गीत को हम कहेंगे थैंक यू जी, क्योंकि वो हमें ले चल रहा है न्यूज़ की तरफ। न्यू क्या होता है, न्यूज़ की तरफ हमें ले के चल रहा है। और उसके बाद आपका और मेरा साथ पूरे दो घंटे के लिए यहीं पर ऑन लाइक अ गोल्ड।
1: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
10: Ramakrishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4-5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
11: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
12: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
11: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
12: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
13: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
14: The Evening Show with Ashwini.
15: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
13: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: हैं जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है. आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दो बेहतरीन गीतों के साथ में इस आवर का आगाज हमने किया. कुछ कुछ होता है अलका याग्निक एंड उदित नारायण, दैट वॉज अ टाइटल ट्रैक. 90s वाले बच्चे कितने खुश हुए, धना धन मैसेज आए हैं भाई मुझे यहाँ पे. एंड सेकेंड वॉज आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज़ में माई फेवरेट ट्रैक फ्रॉम कालिया, जब से तुमको देखा. आय हाय, एल ओ वी ई, यस एल ओ वी ई, इट्स ऑल अबाउट लव, इट्स ऑल अबाउट प्यार. एंड अंजलि सेज अश्विनी मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है जो अपनी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है, तो प्लीज़ उसके लिए कोई गाना प्ले कर दो. तो भाई ये जो गाना था ना एल ओ वी ई, वो आपकी फ्रेंड के लिए किया. एनीवेज अगर आप सबको याद है तो कल मैंने आप सबसे पूछा था कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज, जो भी आपकी शादी हुई है तो अगर अरेंज हुई थी तो क्या आप लव मैरिज करना चाहते थे, और लव मैरिज थी तो क्या आप अरेंज मैरिज करना चाहते थे. अब ये सवाल मैंने कल क्यों पूछा था, उसका रीज़न मैंने कल नहीं बताया, आज बता रही हूँ. बिकॉज टुडे आई एम सेलिब्रेटिंग माय 25th वेडिंग एनिवर्सरी विथ योर ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेज. मैं अपना सेलिब्रेशन, अपनी मस्ती मजा, शॉपिंग, गिफ्ट लेके फिर यहाँ पे स्टूडियो में पहुँची हूँ. बड़ी हरियाली छाई हुई है, जी हाँ. छोटी छोटी क्लिप्स हमारी हमने पोस्ट की हैं हमारे लाइका रेडियो के इंस्टाग्राम पर जाके देखिए. बड़ी हरियाली छा रखी है. वाई? बिकॉज ऑब्वियसली ग्रीन कलर का ड्रेस पहन रखा है. और ऐसे होता ना कि कलर्स के बारे में बात, जैसे अभी हमारी पड़ोसन, मेरे जो पड़ोसन है रेडियो वाली, वो उसके शो पे अभी बात कर रही थी और कह रही थी कि अपने अपने जो कलर्स होते हैं सबके फेवरेट, उनका पर्पल कलर है एंड माई कलर एवरी ईयर ना कुछ नया कलर चेंज होता था. जैसे पिछले साल बहुत सारे ब्राउन कलर की शॉपिंग मेरे यहाँ पे हुई, ब्राउन कपड़े. अभी इस साल पता नहीं क्यों ग्रीन के ऊपर मेरी गाड़ी अटकी है ना. सो एनीवेज आगे बढ़ते हैं. एंड आज 15th ऑफ मे, कौन से चीज़ों को आज सेलिब्रेट किया जाता है अपार्ट फ्रॉम माई एनिवर्सरी, ज़रूर बात करते हैं. एंड आ रही है कॉम्पिटिशन, ध्यान से सुनिएगा.
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For one British pound, you get 127 Indian rupees and 75 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every week when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin when you send over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank.com. Locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.
1: Seven stations, one podcast, one mobile app. This is the Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK.

0: व्हाट अ फैबुलस ट्रैक, मोहम्मद रफी की आवाज़ में आप आए बाहर आई इस फिल्म से सुनाया ये गीत। 1971 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। अच्छा जी, कंपटीशन टाइम, ज़रा ध्यान से सुनेगा। ओके, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर और अगर यानी कि पक्का यानी पक्का अगर आप जाने वाले हो तभी प्लीज़ इस कंपटीशन में टिकट्स के लिए अप्लाई कीजिए। कई बार ऐसे हो जाता है कि डिस्टेंस को देख के फिर वी डिनाई द टिकट्स एंड से कि नहीं हम नहीं जा सकते, एंड मीनवाइल तब तक कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। सो लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद सबरंग आर्ट्स फॉर रामझट विच टेक्स प्लेस ऑन सैटरडे 30th of May एट 7 PM एट मिलेनियम सेंटर वॉल्डिंगम स्कूल कैटरहैम CR37YA। एक्सपीरियंस लाइव गरबा, टाइमलेस फोक songs, vibrant dancers bringing the true spirit of Gujarat to life. You can also buy tickets from ticketsource.com/sabrang.arts. To win pair of tickets, send the word Ramchat for your chance to win. Winner will be selected at random at the end of the show. Tickets will be available at the box office under your name. Please record your name and mobile number aur fir mujhe fatafat Ramchat likh ke bhejiye.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Maria wasn't mastering the art of macaron in Paris by accident. She booked a baking class on Get Your Guide. Fate didn't have the Brooks sipping matcha with a real tea master in Tokyo. They booked that on Get Your Guide too. And luck didn't have John learning the difference between bow and stern on a Majorcan boat cruise. You guessed it, Get Your Guide. The best parts of travel don't just happen. You make them happen when you book your tours, tickets and activities on the Get Your Guide app.
1: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. Like a gold. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
3: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
3: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 kW बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Feel good track. brought to you by Dairy Valley.
10: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भाई सेकेंड आर का जो फीचर है इमोशन ऑफ द डे, फैंटास्टिक फ्राइडे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले बात करते हैं इस अमेजिंग फैक्ट के बारे में. ओके, आई वाज अमेज्ड क्योंकि मुझे पता ही नहीं था. सो ह्यूमन इन्फेंट्स लुक लॉन्गर एट अट्रैक्टिव ह्यूमन फेसेस देन लेस अट्रैक्टिव फेसेस. मतलब तीन से चार महीने के जो बच्चे होते हैं ना, वो होता है ना कि कुछ लोगों की तरफ देख के वो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, और कुछ लोगों की तरफ देख के वो रोना शुरू कर देते हैं. अब इस पर भी एक रिसर्च किया गया जहाँ पर पता चला कि 3 to 4 month old preferred attractive over unattractive domestic and wild cat faces. The preference was not observed when the faces were inverted, suggesting that it could not arise from low level image differences. The human infants जो होते हैं कुछ दिन के ही जो बच्चे होते हैं, कुछ महीने के बच्चे होते हैं, वो इस वजह से ही रोते हैं. अगर कोई बच्चा आपकी तरफ देख के रोता है तो समझ लीजिए, और कोई अच्छा बच्चा अगर देख के हंसता है तो समझ लीजिए. ओके, और आज 15th of May को कौन सी चीज़ें मनाई जाती है? तो नेशनल बाइक टू वर्क डे, नेशनल चॉकलेट चिप डे, नेशनल पिज्ज़ा पार्टी डे, नेशनल नास्कार डे, नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे, नेशनल वर्क फ्रॉम होम डे, नेशनल नायलॉन स्टॉकिंग डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, हैट्स फॉर हेडवे डे. अब ये नेशनल वर्क फ्रॉम होम डे नहीं भाई, कितने लोगों के घर उजड़ गए हैं पता है वर्क फ्रॉम होम से, क्योंकि लोग जो हैं अपने ऑफिस के काम के साथ साथ घर के कामों में थोड़ा ज़्यादा अपना नोज पोक करते हैं. उस वजह से बहुत सारे लोगों के यहाँ पे, बहुत सारी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम हो चुकी हैं. नेशनल वर्क फ्रॉम होम डे ये पहले एक्चुअली लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, अभी ओवर द टाइम चीज़ें चेंज हो गई हैं, हाइब्रिड पैटर्न्स हो गए हैं. 3 दिन लोग घर से काम करते हैं, 2 दिन ऑफिस में जाते हैं. अब कई कंट्रीज़ में तो 4 days वर्क कल्चर हो रहा है, तो उसमें भी लोगों के लिए चॉइस हो रही है अभी कि घर से काम कर सकते हैं, ऑफिस से काम कर सकते हैं. सो नेशनल फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम डे नहीं, इसको अभी आई एम श्योर लोग जो हैं इस वर्क फ्रॉम होम के रूल में डूब गए हैं, लेकिन बहुत से लोग चाहते हैं कि नहीं बस अब ऑफिस जाना शुरू कर देना चाहिए. दैट्स नॉट मी ओनली सेइंग, बहुत सारे लोग ऐसे आप कहोगे क्या बात है अश्विनी, तुम्हारे घर पे क्या सीन है, ऑफिस जाएं सब तो अच्छा होता है ना सभी के लिए. देखो मैं भी तो आई हूँ मेरे ऑफिस. ये है लाइक अ गो.

0: इमोशन ऑफ द डे।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: लाइका रेडियो फाइनलिस्ट एट द रेडियो एकेडमी आरियाज 2026।

0: भाई थर्ड आवा में आपकी हमारी एंट्री हो गई, तो गजल या कवाली क्या सुनाने वाली हूँ, जरा फटाफट लिख के बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट रेखा मनेक, आप विनर बनती हैं रमजट के, 2 टिकट्स आपको मिलते हैं, कंग्रेचुलेशंस। और वहाँ जाके खूब मस्ती करिएगा, 30th को है ये इवेंट, हमें आके ज़रूर बताइएगा। 30th May का ये इवेंट आप जब अटेंड करेंगे उसके बाद ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा ये इवेंट। भाई तहे दिल से कहना चाहेंगे धन्यवाद राजीव पटेल जी को, उसके बाद मिसेस पैकी चैंग, देन इट्स फाल्गुनी जी, संध्या भावसर, रेखा मानेक, अर्जुन जी, जस्मिन जी, अमिता जी, भारती, रोशनी, देन इट्स स्मिता, जहीर भाई, इट्स सिंपल जी, उल्लास जी, सोमिला जी, देन अंजलि जी, थैंक यू सो मच, आप हमारा साथ दे रही है, नंदा जी, निमी जोहरा जी, हरीश रुडा जी, एंड प्रदीप जी, देन वैज, अरुणा, तोची, ज्योति, प्रज्ञा, वंदना, सरोज, रानी, एंड इनका नाम क्या है, सीमा जी, राजेश जी, यस, उसके बाद में दिल, क्या बात है, आप भी हमारा साथ निभा रहे हैं, मितुल, नीलेश, आंटी जी, बेबसी जी, दिलीप जी, सलमा जी, एंड इट्स सीमा यहाँ पे, ओके, थैंक यू सो मच, रसीला जी इज देयर, नौशाद जी, मिसेस शेख, गुल, अमित, निर्मला जी, विनोद जी, सहर जी, हंसवरा जी, हमारे सारे ये प्यारे वो लिसनर्स हैं जिन्होंने अपने नाम जो है यहाँ पे दर्ज कराए थे। साथ में चैताली आप हमें सुन रही हैं इंडिया में, दिशा आप हमें सुन रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, थैंक यू सो मच, ऐसे ही साथ देते रहिएगा, जहाँ जहाँ भी आप हमें सुन रहे हैं ज़रूर अपनी अटेंडेंस लगाते चलिए।
1: Hey, Laika Gold.
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you could get up to 127 Indian rupees and 75 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every week when you send over £1,000. Also, 1 gram gold coin when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit SBI UK. State Bank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Ashwini, brightening up your weeknights.
3: Nene.

0: गजल फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भाई मिला लेंगे एक बार घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ. इट्स 36 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. बहुत ही खूबसूरत गज़ल एंड आप सभी ने ये गज़ल बहुत बहुत अप्रिशिएट की. ओके जी, इस सप्ताह का लास्ट शो मेरा, यानी कि मैं मिलूंगी आप सबसे मंडे. ना ना अभी बाय नहीं कह रही हूँ, लेकिन पूरा सप्ताह जो है बहुत मज़े में जाता है. वो मी दिस हॉट सीट, ये माइक, आप सबसे आके रोज़ गपशप करना, इट हैज़ बिकम सच अ क्रूशल पार्ट ऑफ माई लाइफ. एंड क्रूशल के साथ में बहुत हैप्पी एंड फील गुड फैक्टर है मेरे लिए यहाँ पे आके आप सबसे कनेक्ट करना. ओके, अभी ये जो गाना है ये दुनिया वाले पूछेंगे, महल फिल्म से सुना रही हूँ, 1969 का ये गाना है, किशोर कुमार की आवाज़ में, आशा भोसले की आवाज़ में. लेकिन ये दुनिया वाले पूछेंगे कि अच्छा रोज़ शाम किसका शो सुनते हो, तो ज़रूर बताना कि आप लाइका गोल्ड पे किसका शो सुन रहे हैं मंडे से फ्राइडे शाम 7 से 10 इन लंदन एंड लाइका रेडियो पे इन ग्रेटर मैनचेस्टर.
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
0: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.

0: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट TravelHubWorld.com.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
6: विजिट mantrahollidays.co.uk or call 0203773633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
8: For £1, you'll get 127.81 Indian rupee, 371.03 Pakistani rupee, 436.8 Sri Lankan rupee, 163.48 Bangladeshi taka, 83.76 Afghani.
9: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code

0: टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही है अश्विनी एक बार जरा टाइम चेक कर लीजिए, इट्स नियरली 46 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम था इवनिंग शो विद अश्विनी, तीन अमेजिंग फीचर्स तीन घंटे में आप सबको सुनाए। यस, तो मेरा वीक यहीं पर खत्म होता है, मैं सब मिल आप सबसे मिलने वाली हूँ मंडे ऑनवर्ड्स। तो मंडे इस शाम से लेके फ्राइडे शाम तक का समय आपका मेरा साथ में, मजा मस्ती गपशप इंटरेक्शन, रैंडम से सवाल है ना, मस्ती वाले सवाल, खाने पीने की बातें, कुछ आपकी बातें कुछ हमारी बातें, प्यार दो प्यार लो, बस इसी तर्ज पे मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी पड़ोसन क्यों आई, जल्दी बता क्यों आई।
1: बोल रही थी ना कि आलू का कौन सी डिश पसंद है, हाँ। मुझे वो आलू की सब डिशें पसंद है जो अश्विनी मेरे लिए नहीं बना के लाती।
0: ऑन दैट नोट आई हैव टू से बाय बाय, टेक केयर।
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
4: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: Cold Nights. Hit tracks non-stop throughout the night. This is Like a Gold.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: 0208574 8410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मास में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए। 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्रीमद् भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के हजार नामों के साथ। साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक। स्थान 22 मामास्टर रोड एरो HA37RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208426 0678 और विजिट आश्रम ऑफिशियल वेबसाइट।
4: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम। बुक योर टिकट्स नाउ। विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक Radio.
5: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
6: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
8: प्रेम पास्ट अने फ्यूचर वच्चे अटकायलू एक दिल
9: ने शू लागे छे। हूँ यहाँ साचे वेडिंग प्लान करवा
8: वहाँ की चुकी लव स्टोरी स्टारिंग पूजा जोशी, परीक्षित तामलिया, भाविन भानुशाली, मिलोनी जॉनसा, अ फिल्म बाय ध्वनि गौतम, रिलीजिंग ऑन 15th मई।
10: आ फैमिली वाली फीलिंग ने मैं त्या बहुत मिस करी छे।
4: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रागासन।
11: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
12: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

कर कैसा तू दे फांदे माँ फकीरे सूट पहन कर कैसा तू दे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे।

क्या समझे तुम निजा, मेरा वो सब जाहिल बन गया, साला में तो साहब बन गया, साला में तो साहब बन गया।

0: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।
1: हो जा दो दिलों की मोहब्बत के नतीजे।

0: ना जला, मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करूं, ले तेरे पाँव फरूं, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू,
1: थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम।
0: हाँ अब भी अगर तू चुप ना हुआ तो तोड़ दूँ।